नमस्कार, FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी जलंधर दे रेनबो चैनल तो बोल रहे हैं। आज दिन बुधवार शक संवत 1948 दे ज्येष्ठ महीने दी 27 तारीख है। तद अनुसार ईस्वी सन 2026 दे जून महीने दी 17 तारीख है। इस वेले सवेर के 5:58 हो रहे ने। साढ़े अज की सभा के प्रोग्राम हुण शुरू होंदे ने।

यसै साथी अस्ति प्रसारित हुनुवाले प्रोग्राम तिउनदा प्रसारण समा एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज से कड़ी दी सुई के मुताबिक 6:05 हो रहे ने वेला हो रहे भक्ती रास्ते नाल भरपूर प्रोग्राम वंदना नू सरवण करन दा आओ प्रोग्राम दे इस सफर दा आगाज करने मूल मंत्र दे नाल

उस परमात्मा दी धरती जाके जद असी आत्म समर्पण कर देने आ तां सानू उस दी रजा दे विच हर एक चीज़ खूबसूरत ते सोहनी लगन लग जाती है।

0: हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगे जाहे न गाए, जाहे न गाए।
1: सीता और लक्ष्मण के साथ गंगा के तट पर पहुंचते हैं। वहां केवट से गंगा को पार कराने के लिए अनुनय करते हैं। विस्मित नयनों से केवट श्री राम को निहारते हुए विनती करते हैं, प्रभु तुम तो जग के खेवनहार हो, तुम्हें कौन पार लगाए।

नानक दुखिया सब संसार, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिन नाम आधार।

FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से हुणे तुसी सरवन कर रहे सी भक्ति रस्ती नाल भरपूर प्रोग्राम वंदना। 7 बज रहे ने और वेला हो रहा है FM न्यूज हेडलाइंस का।

लो, फिर एक छोटा जा संकल्प करिए, एक छोटा जा प्रण कर लेने हाँ कि हर खाने दे विच ना घट्टो घट साढ़ी एक सब्जी जिहड़ी है असीं उसनूं जरूर शामिल करांगे। बच्चियां नूं सब्जियां दे फायदे बारे भी दसांगे और मौसम अते जिहड़ियां साडियां स्थानक लोकल सब्जियां हुंदियां ने उहनां नूं असीं प्रैफरेंस भी देवांगे। और बाय बाय किन्नू करनी है, बाय बाय भी करनी है जंक फूड नूं। बिल्कुल जी, जंक फूड नूं बाय बाय करन दी पूरी कोशिश होनी चाहीदी है। जंक फूड दी थां ते तुहाडी प्लेट दे विच होना चाहीदा है सलाद, फल और नाल दे नाल ताजियां सब्जियां जिहड़ियां कि साडी थाली दा एक खूबसूरत हिस्सा भी ने। भई याद रखो, रंग बिरंगी जिहड़ी थाली होएगी ना चंगी सेहत दी रखवाली भी होएगी। हां ते मैं हां तुहाडी अपनी दोस्त निशा, तुसीं सुन रहे हो 102.7 FM रेनबो और 103.6 MHz अमृतसर और न्यूज ऑन योर ऐप ते। तंदुरुस्त रहो, खुश रहो, जुड़े रहो दिल से दिल तक साडे नाल।

0: Rainbow FM! Rainbow FM!
1: सुनो, की तुसी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बारे सुनिया है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इस नाल तोड़ा कर सूर्य कर बन जांदा है, यानी तोड़ा बिजली दा बिल जीरो। होर पैदा हुई कोई भी वादू बिजली ग्रिड नू बेच के पैसे भी कमा सकते हो। ता तुसी बैठे क्यों हो? हुने रजिस्टर करो pmsuryakar.gov.in ते।

क्यों दूर करना था नू? दसो पला मैं क्यों दूर करा है? ना जी ना, हले दूर जान दा समा नहीं जी होया। बिल्कुल जी बिल्कुल, हर बिल्कुल जी, तुसी सुन ले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर। और ये गुड मॉर्निंग जलंधर दे सिलसिले दे विच तुहाडे

एफ एम 102.7 MHz से 8:03 होने तुसी सुनोगे साडे प्रादेशिक चैनल तो पंजाबी दे विच खबरां।

कानूनी सेवावां अथॉरिटी एक्ट 1987 दी धारा 12 दे तहत योग नागरिक मुफ्त कानूनी मदद न्याबंधु मोबाइल ऐप ते www.probono-doj.in तो प्राप्त कर सकते ने। एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा। लड़ीवार
0: नाटक होया

बिल्कुल जी बिल्कुल, आकाशवाणी दीक्षा दो शरिया सत मगहर से विला हो रहा है प्रोग्राम अड्डी टप्पा दा। ते आओ इस सफर दा आगाज करने इस खूबसूरत गीते नाल।

0: देखो नी कुड़ियो किन्ना सोना मुंडा खड़ा सोने ओ तो हाड़ा नाम की है
1: नाम ता मेरा जस्सी सिद्धू आ क्यों
0: ते तुसी केड़े शहर च रहने हो
1: शहर शहर ता साडा जलंधर है
0: ते तुसी चंडीगढ़ की कर दियो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस दे एवेन विच G7 शिखर सम्मेलन विच नवीं भाईवालियां बनाउण अते अंतरराष्ट्रीय एकजुटता दा मुड़ निर्माण विषय ते एक उच्च पद्धरी कार्य सैशन नूं संबोधन कीता। नैशनल टैसटिंग एजेंसी NTA ने मापिया अते उम्मीदवारां नूं नीट UG 2026 प्रीख्या तो पहला घोटालेबाजा तो सावधान रहने की अपील की है। समाजिक न्याय अते शक्तिकरण मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत हफ्ते का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने अमृतसर च लक्षरे तयबा LET दे एक कारकून नाल संबंधित एक घर नूं जब्त किया है। केंद्रीय रेल राज मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू वालों अमृतसर रेलवे स्टेशन तो अमृतसर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगड्डी नूं हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया। ये रेलगड्डी अमृतसर बटाला गुरदासपुर पठानकोट अते जम्मू तवी राही कटरा तक मुसाफरां नूं आधुनिक अते तेज रेलवे सेवा मुहैया करवाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वालों पंजाब भर दियां औरतां सरकारी मुलाजमां लई वड्डी राहत दा ऐलान है। ग्रुप सी अते डी श्रेणियां दियां औरतां मुलाजमां नूं घरां नूं वध तों वध 40 किलोमीटर दे दायरे दे अंदर ही तैनात कीता जाएगा। अमृतसर दी ड्रीम सिटी कॉलोनी दे विच जम्मू पुलिस ने अमृतसर देहाती पुलिस वालों सांझे ऑपरेशन दौरान एक फ्लैट तों एक AK-47 हथियार अते ड्रग बरामद होने की खबर है। अते मर्दा दे क्रिकेट विच अज लखनऊ विखे 3 मैचों की लड़ी के दूजे एक रोजा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच का भारत का मुकाबला अफगानिस्तान के नाल होएगा। ये सन हुण तक दियां FM न्यूज हेडलाइंस। FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से 9:02 हो रहे हैं और वेला हो रहा है प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी का।

जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही फ्रीक्वेंसी ते तुसी आयो। बिल्कुल रुको रुको रुको, ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगी लगी। हाँ बस बिल्कुल जी बिल्कुल सही फ्रीक्वेंसी ट्यून की थी हुई है, यानी कि 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जलंधर।

0: सुनो
1: FM बैंड 102.7 MHz से होने तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी वेला हो रहा है FM न्यूज हेडलाइंस आ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे देशों नूं आलमी समुद्री मार्गां दी सुरक्षा यकीनी बनाउण दी अपील कीती अते टकराव अते खेतरां विच नाविकां दी सुरक्षा ते वी जोर दिता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज फ्रांस विच G7 शिखर सम्मेलन दौरान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दे नाल मुलाकात करनगे।

इंजॉय कर रहे हो जी 102.7 एफएम रेनबो। दी प्रोग्राम शुरू हो गया है जी, गीत बहार। वेल दोस्तों, गीत बहार दे विच आज निवेदिता दा साथ रहेगा तुहाडे नाल, और गीतां दी बहार दे नाल नाल जानकारियां दा सिलसिला भी असी प्रोग्राम दे विच जारी रखांगे। सो जाना किधरे नहीं है, बने रहना इसी तरह ही मेरे नाल ते इंजॉय करते रहना 102.7 एफएम रेनबो ते। हुण प्रोग्राम दी शुरुआत करन जा रहे हैं जी गीत। तुसी सुनोगे जुबिन नौटियाल दी आवाज़ दे विच तरीफां।

तुझे कितना चाहने लगे हम। जी जे किसी नु जान लग गया तो फिर रब दा शुक्राना करना भी तो बनता है ना कि सानू इन्ना प्यारा साथी दिता है। जी गल कर रही हूँ थैंक्स थेरेपी दी। दोस्तों जिंदगी दे विच थैंक्स थेरेपी नु अपनाना बहुत ही जरूरी है। जी एक थेरेपी है जदों असी हर समय परमात्मा का शुकराना करते हाँ थैंक्स करते हाँ कि जो सानू दिता है बहुत ही वधिया दिता है ते जो सानू मिलेगा वह भी साड़ी भलाई लई होएगा ते फिर असी सैटिस्फाइड रहने हाँ ते जदों सैटिस्फाइड रहने हाँ ते फिर सब कुछ ठीक ठाक रहिंदा है साड़ा शरीर भी ठीक साड़ा दिमाग भी ठीक ते असी भी ठीक। सो थैंक्स थेरेपी नू अपनाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये नाल कंटेंटमेंट आएगी ये नाल हैप्पीनेस आएगी और हैप्पीनेस ही तो है जो लाइफ के विच बहुत जरूरी है सब तो जरूरी है। सो थैंक्स हमेशा करते रहना चाहिए जो है बहुत बढ़िया है तो जो आएगा बहुत बढ़िया ही आएगा क्योंकि देन वाला जो है वो बहुत ही महान है। सो थैंक्स हमेशा करते रहना शुक्राना हमेशा करते रहना करके देखना फिर ऐसा लगेगा कि मन सच्ची बहुत हल्का हो गया असी तो बहुत ही अमीर हाँ साढ़े को तो बहुत कुछ है क्योंकि बहुत लोग ऐसे ने जिन्हों कोल वो नहीं है जो साढ़े को है। सो थैंक्स हर पल ले थैंक्स हर खुशी ले थैंक्स हर लम्हे दे ले करना बहुत ही जरूरी है। तो प्रोग्राम दे विच जे असी थैंक्स की गल की है तो फिर गीत भी थैंक्स वाला सुनना बहुत जरूरी है। तो चलो जी मोहित चौहान की आवाज़ दे विच गीत इंजॉय करते हैं रब का शुक्राना।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

एंजॉय कर रहे हो जी 102.7 एफएम रेनबो ते प्रोग्राम चल रहे जी गीत बहार गीतां दी लगी हुई है बहार ते गीतां दी बहार दे विच थोड़ा थोड़ा ना मेरा भी मन करन लग पैंदा है कि बस सुन गीत सुन ले हुण मैं भी जाना ते लो जी मेरी भी आ गई है वारी। सो दोस्तों सब तो जरूरी होंदा है लाइफ दे विच मैनेजमेंट मैनेजमेंट करनी बहुत ही जरूरी है टाइम मैनेज करना। जिंदगी विच बहुत सारिया चीज़ा ने जिन्हों साडे टाइम की जरूरत है तो मैनेज असी करना है। घर परिवार को कितना टाइम देना है अपने वर्कप्लेस को कितना टाइम देना है अपने आप को कितना टाइम देना है अपने आर्ट को कितना टाइम देना है ये सानू मैनेज करना पड़ेगा। अजिहा ना हो कि एक तरफ ही असं लुढ़क जाइए एक पासे ध्यान देंदे देंदे असी बाकी सारिया चीज़ा खराब कर लीए। हर चीज़ को बनता महत्व देना जरूरी है। अजिहा ना हो कि जे असी वर्क अलकोहलिक है तो असं जी कम ही करी जाने घर परिवार सब भुला दिता बच्चे भुला दते। नहीं, जिथे घर परिवार की इंपोर्टेंस है वह है उन्होंने समझना पड़ेगा। काम की अपनी जगह इंपोर्टेंस है तो अजिहा भी ना हो कि जेकर असी अपनी हॉबी नू टाइम दे रहे हैं बहुत चंगी गल

प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो जी। गीत बहार, गीत बहार दे विच दोस्तों हुन समा हो गया है तो हानू बाय बाय कहना फिर नहीं अजे नहीं जा रही, अजे भी 5-6 मिनट पाए ने अब, और ए 5-6 मिनट नू असी पूरी तरह यूटिलाइज करांगे, गल्ला बातें भी करांगे ते गीत भी एंजॉय करांगे, और फिर इस प्रोग्राम तो बाद मैं थानू मिलांगे अगले प्रोग्राम दे विच ते वो होएगा जी पंजाबी तड़का। वेल दोस्तों असी गल कर रहे सी कि गर्मी बहुत है, असी अपना ध्यान रखना है, अपना ध्यान तो जरूर रखना है पर साड़ी होर भी जिम्मेवारी है वह है जी पशु पंछियों के लिए। सो दोस्तों असी अपने घर दियां छत्तां ते पानी दा कसौरा ते दाणा भी रखना है जी, क्योंकि यह पंछी ने ना जिहड़े इन्हां नूं भी प्यास लगती है ते शहरां दे विच किते दूर दूर तक पानी नज़र नहीं आंदा और फिर ताहीं तां शहरां दा रुख नहीं करदे है ना। सो सानूं पानी दे कसौरे भर के रखने होणगे इन्हां दे वास्ते, जेकर छत ते नहीं रखना तां अपने आस पास कोई लॉन है कोई पार्क है घर दे बाहर भी रख सकते हो, पर रखो जरूर क्योंकि ये बेजुबाना नूं भी प्यास लगती है। दाना भी रखिए और पानी भी रखिए ताँ कि पंछियों की जिहड़ी चहचहाट है वह शहरां दे विच इसे तरह ही बरकरार रहे, उन्हां दा आना जाना साडे वल लग्या रहना चाहिए है ना। सो इन्हां दा ध्यान रखना भी साडी ही जिम्मेवारी है। इसे नाल ही प्रोग्राम नूं इत्थे ही करदे हां जी वाइंड अप ते जांदे जांदे मैं गीत प्रोग्राम दे विच जरूर चला के जावांगी ते फिर कुछ ही पलां दे बाद मिलदे हां अगले प्रोग्राम पंजाबी तड़का दे विच। कॉल करनी नहीं भुलनी अगले प्रोग्राम च। सो हुन एंजॉय दिस ट्रैक मोहित चौहान दी आवाज़ दे विच तुम से ही।

0: प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो जी। पंजाबी तड़का अते पंजाबी तड़का दे विच पहुंच चुके ने जी अगले कॉलर। तड़का लगाने के लिए गल करते हैं इन्हां दे नाल। हैलो,
1: एकदमान सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: मैं करदीप सिंह बोल रहा, पिंड लादियां खोल जिला लुधियाणा जी।
0: स्वागत है जी प्रोग्राम दे विच, बहुत बहुत। और सब ठीक? गर्मी गुर्मी बहुत ज्यादा? फिर की कर रहे हो गर्मी दे विच हुण? ठीक है ठीक है, चलो बहुत वधिया। अज तुसी मैनू किस्सा सुनाना है, एक बचपन दा सुनाओगे? जिन्हों सुन के असीं सारे खूब हसीए। एहो जिहा कोई किस्सा, कोई कुट पई होवे, कदी कोई चोरी कीती होवे, या
1: हैं? एक वारी दा किस्सा मैं सुणाउंदा जी। हां, ते मैं ना इहनूं मास्टरां ने बहुत कुट्टिया सी।
0: मास्टरां ने कुट्टिया सी?
1: हां जी हां जी।
0: पढ़िया करो ना, फिर पढ़दे नहीं सी तुसी?
1: कमरे च लाइट नहीं सी,
0: कि नहीं लाइट सी। खूब कुट पई है। चलो कई एहो जिहा ना किस्से कहानियां हुंदे ने जिहड़े तां उमर सानू याद रहिंदे, नहीं भुलदे, ते उहनां नू जदों उदों तां भावें गुस्सा आया होवे ते हुण असीं याद कर करके सानू हासा आउंदा है ना।
1: हाँ जी,
0: हरेक दी जिंदगी विच अजिहे छोटे छोटे किस्से जरूर हुंदे ने जिहड़े सारी उमर नाल ही रहिंदे है। ते मैनूं जी ते मैनूं गीत दस्सो सर, किहड़ा सुनना तुसीं? बुलाना पैना
1: हुण।
0: लो जी आपां गीत चला देना, उन्हां ने बोल पैना। थैंक यू सो मच कॉल करन दे लई। जरूर प्ले करांगे जी गीत। गीत तो पहला एक छोटी जी ब्रेक।

मुफ्त कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-44-54 तो प्राप्त की जा सकती है। एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in। इंग्लैंड की धरती से भारत दियां तियां तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतने

आकाशवाणी जलंधर तो सुनो, आईसीसी टी20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर, भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे एफएम रेनबो चैनल तो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते।

0: कामयाब हो गए मैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, वो भी जरूरी है।
0: हाँ जी
1: ते फिर बाद विच इदां तां नहीं कि मैच देखण दी दहशत ही पै गई होवे वी मैच देखना ही नहीं, डंडा
0: नहीं
1: पैंदा।
0: नहीं मैडम, मैच फिर देखी दा ही घर बह के जिस दिन छुट्टी हो गए।
1: हाँ फिर पापा दे नाल ही बह के देखना सी ना, कि पापा तुहाडे नाल ही
0: देखो
1: देखना।
0: जी मैडम जी, उदो दा मैडम दा जिहड़ा चस्का पिया है ना, हजे तक नहीं गया जी।
1: चलो बहुत
0: अगों
1: वधिया
0: साडे
1: बहुत।
0: बच्चिआं नूं वी पै गया चस्का इहो ही।
1: हाँ चलो, कई चीजा
0: हाँ
1: हुंदियां
0: जी
1: ने ना, ओ हेरिडिटी दे विच ही आ जांदियां, ओ ते फिर अगो दी अगो चलदियां है ना।
0: बिल्कुल मैडम, जिहड़े बच्चे भी ना साडे ओह मोबाइलां तों दूर ने, बस इहो चीजां ते शौक हैगा, मैच मूच देख लिया।
1: चलो बहुत वधिया, बहुत ही वधिया जी। ये तां हुण गाना दसो मैनूं, कहड़ा सुनोगे?
0: गाना सुना दिओ जी, गुरदास मान दा बाबे भंगड़ा पांदे ने।
1: बाबिआं नूं भंगड़ा पवाउणा है अज्ज, है?
0: बिल्कुल जी, सारे ही पावांगे जिन्ने सुन रहे जी मैडम।
1: सारे जने असीं भंगड़ा पावांगे, पर भंगड़े तो पहलां एक ब्रेक भी लैनी है असीं। ठीक है जी,
0: ठीक
1: थैंक
0: है
1: यू सो
0: मैडम,
1: मच कॉल
0: शुक्रिया
1: करन दे
0: मैडम।
1: लई। ते लो जी, बाबिआं नूं भंगड़ा असीं जरूर पवाउणा है, ते पर भंगड़ा पाउण तों पहलां एक छोटी जी ब्रेक लैनी है।
2: ये मेरा छोटा भरा है ना, बहुत शरारती है। कॉलेज विच मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा नु दिखाउंदा सी। कल मैं लाइट दे बिल ते जीरो अमाउंट वेखी, मैं सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किता होवेगा, नहीं तो जीरो बिजली बिल किवें पॉसिबल है। पूछया ते आखन लगा, वीर जी सब ऊपर वाले दी मेहर है, सोलर पैनल है ना। मैं क्या, ओहे ठीक है पुत्र। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।

प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो जी होम स्वीट होम ते होम स्वीट होम दे विच मैं हाजिर हाँ जी निवेदिता लेके तुहाडे लई जानकारियां दी पिटारी लो जी पिटारी मैं खोल ली है ते हुण मैं तुहाडे नाल एक बहुत इंपॉर्टेंट गल करन लगी जी। अक्सर रात नूं खाने तो बाद ना सानू मिठा खाने की क्रेविंग होंदी है ना, जदों भी असीं खाना खाने बाद विच मन करदा है कि कुछ मिठा खाया जाए, बट रात नूं जेकर तुहाडा मिठा खाने का मन करे ना तो चॉकलेट रात नूं नहीं खानी क्यों वह भी मैं दस दिनी हाँ। चॉकलेट के शक्कर ते थोड़ी जी मात्रा च कैफीन होंदी है ना, तो खासकर जेकर असीं डार्क चॉकलेट खाने तो उहदे विच कैफीन की जिहड़ी मात्रा है वह ज़्यादा होंदी है, ते जेकर असी देर रात चॉकलेट खावांगे ना ते इहदे नाल नींद आण दे विच देरी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है ते नींद दी जिहड़ी क्वालिटी है वह भी प्रभावित हो सकती है। सो चॉकलेट जेकर खानी है तो उहदा सेवन असी दिन दे समय करना है या उहनू सीमित रखो शाम तक, रात नू चॉकलेट नहीं खानी क्योंकि फिर नींद नहीं आनी। सो जे चॉकलेट खानी है तो दिन के टाइम पर खाओ, रात को ना खाओ क्योंकि सोना भी तो जरूरी है ना, रात सोने वास्ते बनी है, तो जेकर चॉकलेट खा के अखा होर खुल गई तो फिर सोवोंगे किवें। सो चॉकलेट रात को नहीं खानी है ना इंपॉर्टेंट। सो जेकर तुहाडे बच्चे भी रात को चॉकलेट मंगते हैं तो उन्होंने मना किया जाए क्योंकि फिर चॉकलेट खा के नींद नहीं आती, उन्होंने दिने चॉकलेट खिलाया करो। सो प्रोग्राम एंजॉय करते रहना जी होम स्वीट होम, ते हुण मैं प्ले करन जा रही हाँ तुहाडे लई गीत बहुत सोहणियां आवाज़ां दे विच सुरिंदर कौर ते प्रकाश कौर जी दी आवाज़ दे विच। एंजॉय करते हैं यह गीत।

एंजॉय कर रहे हो जी 102.7 एफएम रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा है होम स्वीट होम तेला जी होम स्वीट होम दे विच एक होर इंपॉर्टेंट गल मैं लेके तुहाडे लई हाजिर हुई हाँ जी वो ये है कि आपां अक्सर बच्चों नूं कहने कि केला बहुत इंपॉर्टेंट है केला खाओ बनाना बहुत शरीर नूं ताकत दिंदा है नो डाउट बहुत अच्छा फूड है ईवन कि अपने आप विच कंप्लीट फूड हुंदा है बनाना और बनाना खाण दे नाल सानूं इंस्टेंट एनर्जी भी मिल जाती है सो केला ऊर्जा पोटाशियम और फाइबर का चंगा स्रोत है और ज़्यादातर सवेर दे टाइम ते ते एक्सरसाइज करन तो बाद सलाह दी जाती है कि हुन केला खादा जाए पर दोस्तों कई लोग केले दे इन्ने शौकीन हुंदे है कि रात नूं भी परहेज नहीं करते रात नूं केला खाना शुरू कर देंदे ने पर नहीं केला खाण का भी टाइम है दिन दे टाइम ते खाओ सवेर दे टाइम ते खाओ पर रात नूं केला नहीं खाना क्यों नहीं खाना वो मैं दसदी हाँ क्योंकि केला रात नूं खाण दे नाल इक तां भारीपन दी प्रॉब्लम हो जाती है ते सानू डाइजेशन दी भी प्रॉब्लम हो जाती है पचदा नहीं है पाचन संबंधी दिक्कत हो जाती है ते सानू इदां लगता है कि लेटे लेटे हैवीनैस हो रही है सो इसलिए केले दा जिहड़ा सेवन है असीं सवेर दे टाइम ते करना है रात नूं केला नहीं खाना बेशक बहुत अच्छा फूड है पर यह फूड दिन दे वास्ते है रात दे लई ए नहीं है नोट कर लिया जी बिल्कुल नोट करके रखो केला खाना है रोज खाओ पर सवेर दे टाइम ते खाओ राती ना खाओ ते लो जी प्रोग्राम नू अगे दौड़दे हां ते एंजॉय करदे हां गीत गुरनाम भुल्लर दी आवाज दे विच।

प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो जी, होम स्वीट होम। ते दोस्तों होम स्वीट होम दा जिहड़ा दायरा है ना, ओह बहुत वड्डा है। इहदे विच गल सिर्फ साडी सेहत दी जां साडे घर दी नहीं कीती जांदी, बल्कि साडे आस पास दी भी कीती जांदी है, जिहदे नाल असीं डायरैक्टली इनडायरैक्टली किसी भी तरह रिलेटिड हाँ। हर मुद्दा हर विशा असीं इहदे विच लैके आने। सो गल करदे हाँ दोस्तों स्वस्थ पौद्यां दी। जेकर साडे घर दी बागबानी है जिहड़ी, ओह खिली खिली होएगी ते घर फिर होर भी सोहणा लगदा। ते किवें अपने पौद्यां दा ध्यान रखना, किवें अपनी जिहड़ी बागबानी है वह खिली खिली रखनी है, उहदे बारे असीं गल करांगे। दोस्तों की होंदा कि कई बारी ना पौद्यां दी जिहड़ी ग्रोथ है वह घट जाती है, तो हौली हौली धीमी हो जाती है, फुल घट आते हैं जे, या फलों वाला है तो फल घट आते हैं। तो असीं की करते हैं, असीं उहदे विच बाज़ारों लिया के खादा वगैरह मिलाने हाँ, तो आर्टिफिशियल असी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ग्रोथ में वधाने लई। पर नहीं, जेकर असी कुदरती तरीके नाल प्रकृतिक तरीके नाल टॉनिक तैयार करके इन पौद्यां दे विच पाइए तो उहदा बहुत फायदा होएगा, क्योंकि जिहड़े असी आर्टिफिशियल चीज़ा पाने उहदे नाल एक बारी तो ग्रोथ नज़र आती है पर वह अल्टीमेटली नुकसानदायक हुंदा है। तो जेकर असी नैचुरल वे दे नाल ग्रोथ ते फोकस करांगे तो इहदे नाल मिट्टी है जिहड़ी वह भी न्यूट्रिएंट्स वाली हो जाएगी, तो पौधे का जड़ा वादा है वह भी चंगी तरह होएगा। सो मैं अच्छ दसन जा रही कि किमें तुम नैचुरल वे के नाल घर के ये टॉनिक तैयार कर सकते हो, जिदे कि पौद्या की जी ग्रोथ है वह अच्छी होएगी। और पहला जोड़ा मैं घोल दसन लगी हाँ जी, वह है तरबूज तो एलोवेरा का। तरबूज एलोवेरा टॉनिक है एक, तुम किमें तैयार करना, 5 लीटर पानी लैना, 5 लीटर पानी के 500 ग्राम छोटे छोटे कटे हुए तरबूज के छिलके पाने हैं। 5 लीटर पानी ते 500 ग्राम छोटे छोटे कटे हुए तरबूज के छिलके, 300 ग्राम कटे हुए केले के छिलके, 200 ग्राम कटी हुई एलोवेरा की पत्तियां, ए असी पा लैनी है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दी हाँ, असी 5 लीटर पानी लैना, 500 ग्राम असी पाने हैं तरबूज के छिलके छोटे छोटे कट के, 300 ग्राम असी पाने हैं केले के छिलके, 200 ग्राम एलोवेरा दत्तियां असी उस पा देनी है। इसनों बाल्टी पा के ढक के छां वाली जगह पर रख देना, 3 दिन रखना। दिन च एक बारी छड़ी दे नाल सोटी दे नाल एक घोल तुसी घुमा देना, ते फिर इनू कज के टक के इसे तरह रख देना। 3 दिन बाद घोल दी सतह ते तुसी देखोगे कि हल्की हल्की सफेद कलर दी ना परत दिखाई देन लग गई है, ते घोल दे विचों थोड़ी थोड़ी जी स्मेल गंध आन लग पई है, ते मतलब घोल तुहाडा रेडी है। हुण इसनू छान लैना ताकि छिलके छिलके जे निकल जाण। घोल साडा रेडी हो गया, ते हुण एक भाग घोल दे विच 10 भाग असी पानी मिला के इनू पतला कर लैना। तो हुण 12 इंच का जेकर साडा गमला हैगा, 12 इंच गमले दे विच इस पतले घोल की 300 मिलीलीटर या 1 गिलास इहदा भर के पानी पानी का पा देना। जेकर 12 इंच का गमला तो उस 1 गिलास ए भाग पानी असी पा देना। ध्यान रहे कि जिहड़ा घोल है उस सुकी हुई मिट्टी विच नहीं पाना, मिट्टी दे विच पहला थोड़ी जी नमी होनी चाहिए, हल्की हल्की मिट्टी गिली होनी चाहिए, उहदे विच असी यह घोल पा देना। फिर तुसी देखियो तुहाडे जिहड़े पौधे है चंगी तरह वध फुल के तुहानू नज़र आउणगे, ते जे फल फुल इहनू लगदे है ते उह सोहनी तरह लगनगे। रेडी कर लियो, क्योंकि सौखा ही तरीका है, घरां विच छिलके आम ही मिल जाते हैं। तरबूज असीं अजकल खाने हैं, तरबूज का छिलका भी हैगा, केले का छिलका भी हैगा, एलोवेरा दी पत्तियां भी ईजीली अवेलेबल होंदियां ने। सो इन्हां नूं कट के तुसीं पानी दे विच पा देना, ते 3 दिन बाद घोल तैयार हो जाना, ते इन्हूं गमले च पा लेना। औखा कुछ भी नहीं है, सौखा जिहा काम है, करके देखो।

बाजार जाओगे, आर्टिफिशियल टॉनिक ले आओगे, ओदी बजाय नेचुरल टॉनिक तैयार करो ते अपने जेडे पौधे उन्हां दी सेहत दा ध्यान भी रखो। लो जी, प्रोग्राम होम स्वीट होम ते अगला गीत भी तुहाडे रेडियो सेट ते पहुंच रहा है जी, सरबजीत चीमा दी आवाज़ ते विच बोलियां।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

0: इंग्लैंड की धरती से भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते।
1: घर खर्चे दे पैसे दियो हस्बैंड जी।
2: ए राशन दे 15,000, सब्जियां दे 2,000
1: ते बिजली दे बिल दे
2: हुन 0 रुपए की में दवा।
1: ओहो भुली गई सी, हुन ता सोलर पैनल लग गए है ना, ता फिर जो बाकी बचे हुए 4,000 ने उस दी शॉपिंग करन चलिए।
2: जरूर PM सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना जुड़न ले रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: इंजॉय कर रहे हो जी प्रोग्राम होम स्वीट होम। तो दोस्तों होम स्वीट होम दे विच असी गल कर रहे सी कि अपने घर दी बागबानी नू किवें दुरुस्त करना है, किवें असी अपने पौद्यां नू चंगी खुराक देनी है, किवें उन्हां नू स्वस्थ रखना, तो इसे लिए टॉनिक घर किवें बना सकते हो। सो तरबूज एलोवेरा दा टॉनिक मैं तुहानू दस चुकी हाँ, तो अगला जिहड़ा मैं तुहानू टॉनिक दसन जा रही हाँ वह है प्याज ते केले दा टॉनिक। दोस्तों की करना जी, केले दे छिलके ते एलोवेरा दे टुकड़े ते प्याज दे छिलके इन्हां नू 3-4 दिन पानी च तुसीं भिगो के रखना है। केले दे छिलके, एलोवेरा दे टुकड़े ते प्याज दे छिलके इन्हां नू 3-4 दिन असी पानी च भिगो के रखना है, ढक के रख देना है। ते इस तों बाद दोस्तों तुसी पानी नू छान लेना है। और इस्तेमाल किवें करना है जी, एक भाग तुसी घोल लेना है ते एक भाग पानी लेना है, ठीक है। इनू अद्धा अद्धा लैके ते इस नू मिट्टी विच मिला देना है। ते देखियो जी, फिर पत्तियां दे स्प्रे भी कर सकदे हो, इहदे नाल तुहाडे पौधे दी जिहड़ी सेहत है ओह चंगी हो जाएगी, पत्ते भी वधणगे ते जे फल फूल वाले पौधे है ते ਉਹ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੋਨਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਟੋਨਿਕ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਟੋਨਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਗਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦੇਣਾ। 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ, 1 ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ, 1 ਕਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਲਾ ਘੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁੜ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲੀ ਹੋਈ ਹਿੰਗ ਇਹ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ, 1 ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ, 1 ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ, 1 ਕਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਘੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁੜ, ਪਤਲਾ ਘੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁੜ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲੀ ਹੋਈ ਹਿੰਗ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਛਾਣ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਤਲ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸਪਰੇ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਨਿਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਹਰੇ ਭਰੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਲਾ ਜੀ ਹੋਮ ਸਵੀਟ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਟਿਪਸ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਵਾਪਿਸ ਆਓ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੀ।

प्रोग्राम चल रहा है जी, होम स्वीट होम दे दोस्तों, होम स्वीट होम दे विच गल करते हैं खान पीन दी। दोस्तों अक्सर कई लोग ना कहते कि कुछ नहीं होंदा जी, दही वगैरह पर राती खा सकते हैं, चावल भी राती खा लो, दही भी खा लो, कुछ नहीं होंदा। पर नहीं, वंस इन अ वाइल इट्स ओके, पर जेकर तुसी रूटीन दे विच बना लेंदे हो कि नहीं कुछ नहीं होंदा कुछ नहीं होंदा, रोज़ आप रात नूं दही खाने लग जाइए, नहीं। जिहड़ा दही है इहदा टाइम है दिन दा, रात दा नहीं है। दही या इस तो तैयार जड़ियाँ चीज़ा ने उसी रात नू सेवन नहीं करनी है। दही दे विच प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स चंगा हुंदा है, अच्छा स्रोत है प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स का। लेकिन रात नू जेकर असी दही खाने हैं तो इहदे नाल बलगम बनती है, पेट फुलन की समस्या होंदी है, पाचन की प्रॉब्लम होंदी है। सो रात नू असी दही नहीं खाना, इहनू असी दोपहर के समय खा सकते हैं या सवेरे खा सकते हैं, पर रात नू नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? क्योंकि बलगम की प्रॉब्लम होएगी, पेट फुलन की प्रॉब्लम होएगी, तो पाचन संबंधी सानू जिहड़ी दिक्कतां ने वो होने लग जांदियां ने। इसलिए रात नू दही नहीं खाना चाहिए। जेकर कोई कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होंदा कुछ नहीं होंदा, तो उनको नहीं जी असी नहीं खाना। और चावल की भी दिक्कत होंदी है, चावल कदों खाने चाहिए वो मैं तुहानू दसांगी ब्रेक तो बाद। यह गीत सुन के आओ, फिर असी गल करते हैं कि चावलों का केड़ा टाइम है। फिलहाल इंजॉय करते हैं महताब विरक की आवाज़ के गीत पग।

अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे। दोस्तों मासूमियत ए अंदाज सिर्फ साढ़े बॉलीवुड दे गोल्डन एरा विच ही मिल सकता है। तुसी सुन रहे हो मिट्टी मेलोडीज। ते हुन चलते हाँ 80 दे दहाके वाल, जदों सफ़र लंबा होवे, बदल गरज रहे होण ते मीह दियां बूंदा पै रही होण। अजिहे मौसम विच हम सफ़र नाल लोंग ड्राइव ते जाण दा मज़ा ही कुछ होर है। फिल्म शक्ति दा गीत जिस विच अमिताभ बच्चन ते रति अग्निहोत्री ने रोमांस की एक नवी मिसाल कायम की सी। आर डी वर्मन साहब का संगीत, किशोर दादा ते लता जी की आवाज़ पेश है। जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया।

जाने कब कैसे इकरार हो गया। दोस्तों, जदों भी कोई नवा नवा हम सफ़र जिंदगी में आता है तो सफ़र की शुरुआत बड़ी मासूम तो सुपने वर्गी होंगी है। 80 के दहाके की शुरुआत में फिल्म बेताब नाल दो नवे सितारिया ने बॉलीवुड में कदम रखा। सनी देओल ते अमृता सिंह घोड़िया ते सवार, पहाड़ा के खूबसूरत रस्ते ते लता जी ते शबीर कुमार की खूबसूरत आवाज़। आओ सुनते हैं मिड डे मेलोडीज़ का अगला गीत, जब हम जवां होंगे।

बहुत ही खूबसूरत गीत। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, पर जहाँ भी होंगे तुझे याद करेंगे। सचमुच

0: सुन सकोगे। आकाशवाणी जलंधर दे एफएम रेनबो चैनल तो 102.7 मेगाहर्ट्ज दे।
1: यार सच दसा हुणे तां गर्मियां शुरू होईयां ने ते 7-7 हज़ार रुपए बिजली दा बिल भी आउण लग पिया है। वाइफ कदों तो बोल रही है सोलर पैनल लगाउण लई, वो आखदी है कि सरकार सबसिडी भी दे रही है। मैं जिन्हां नूं भी पुछिया उन्हां सब दा बिजली दा बिल जीरो आ रहा, इस बार मैं लगा ही दिना। जदों बिजली मुफ्त मिलदी है तां लै के उहनूं रहि वीर, तुसीं भी लगा ही दिओ।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमनदीप। पहला चुनावी खबरां। जी 7 शिखर सम्मेलन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाल मुलाकात करनगे। श्री मोदी ने कहा कि पिछले दहाके विच भारत दीआं रक्षा समर्थाओं विच महत्वपूर्ण तब्दीली आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वित्तीय साल 2025-26 विच भारत दा सालाना रक्षा उत्पादन 178,000 करोड़ रुपए के सब तो उच्चे पद्धर ते पहुँच गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 12 सालों में नागरिकों की सुरक्षा ते दुश्मन की तबाही लई मजबूत सुरक्षा ढांचा बनाया गया है। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप क्रिकेट मैच में आज भारत का नीदरलैंड नाल मुकाबला होगा। हुण खबरां विस्थार नाल। जी 7 शिखर सम्मेलन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाल मुलाकात करनगे। इस मुलाकात ते सब दीआं नज़रां ने भारत जी 7 सम्मेलन विच एक भाईवाल देश है। श्री मोदी ते श्री ट्रंप विचकार आखिरी मुलाकात पिछले साल फरवरी च अमरीका च होई सी। अज दी मीटिंग विच दोवें धिरां विचकार कई खेतरां विच सहयोग नूं मजबूत करन ते आपसी हित दे खेतरी ते आलमी मुद्दिआं ते व्यापक चर्चा होण दी उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज एक होर G7 सैशन विच भी हिस्सा लैणगे। इस दा विषय है सारिआं दे लाभ लई संतुलित समावेशी अते निरंतर आर्थिक विकास नूं मुड़ शुरू करना। ओह मुद्रा फंड नूं सुरक्षित तेज़ अते प्रभावशाली ढंग नाल लागू करन ते एक वर्किंग लंच विच भी शामिल होणगे। कल शिखर सम्मेलन दौरान प्रधानमंत्री ने कैनेडा दे प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, बरतानिया दे प्रधानमंत्री कीर स्टामर अते UAE दे राष्ट्रपति शेख मुहम्मद बिन जायद अल नहायन नाल मुलाकात की। उन्होंने कीनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फता अल सीसी, जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची और दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग नाल भी मुलाकात की। श्री मोदी अज शामी फ्रांस की राजधानी पैरिस पहुंचणगे। साडे पत्रकार ने खबर दी है कि भारतीय भाईचारा प्रधानमंत्री की बेसब्री नाल उड़ीक कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले दहाके विच भारत दीआं रक्षा समर्थावां विच आत्म निर्भरता ते नवीनता ते तकनोलॉजी ते स्वदेशी निर्माण की सहायता नाल महत्वपूर्ण तब्दीली आई है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्मां ते MyGov तों एक पोस्ट सांझी करदिआं प्रधानमंत्री ने इस गल ते चानणा पाया कि किवें भारत ने उन्नत स्वदेशी तकनोलॉजियां की सहायता नाल जमीन, समुंदर ते हवा विच अपनी रक्षा समर्थावां नूं मजबूत कीता है। उन्होंने कहा कि पिछले

दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीस ते तुसी सुन रहे हो एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज ते आकाशवाणी जलंधर दा एह रेनबो चैनल है। दोस्तों वेल, मैं आ चुका हां वापस ते थोड़े जिहड़े चेहरे दी मुस्कान लियाण, थोड़े दिलां नूं मतलब ना एक खुशी देन इदां दी कि हाँ यार तुसी ना बड़ी चिरां तों शायद हो लभ रहे होगे। वेल, कहिंदे ने रेडियो की दुनिया च जदों जिहड़ी दुपहर आती है ना, तां दिल च ना कोई अणजिहा जज्बा कुसकदा है, समझ रहे हो, अजिहा जज्बा कुसकदा है। कहिण दा भाव है कि उदों 102.7 एफएम रेनबो तो आवाज़ आउंदी है कि प्रोग्राम दिल आज शायर च तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यह कोई आम प्रोग्राम नहीं है। वैल दोस्तों, मैं तुहानूं दस दिंदा कि यह हर उस दिल की धड़कन है जिहड़ा प्यार करदा है, टुटदा है, मुस्कुराउंदा है, पर कह नहीं पाउंदा कि यह प्रोग्राम वैल दिल आज शायर है ना। कहिंदे ना हर रोज़ तुहाडे दिल दे बंद दरवाजे नूं शायरी की चाबी नाल खोलदा है। इत्थे सरोतिया दीआं लिखियां शायरियां, गज़लां, नज़मां ते खत ते आरजे दी आवाज़ च जदों तुसीं गूंजदे हो ना।

दोस्तों प्रोग्राम चल रहा दिला शायर है, तो मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। स्रोतियां ने सानू कितना कुछ भेज दिता है, लाइक हर स्रोत ने अपनी अपनी लिखती रूप से ना बहुत कुछ भेज दिता है। तो चलो शुरू कर दें दोस्तों। वेल दोस्तों प्रोग्राम पहला दसदा कि चल रहा दिला शायर है, एंड यह प्रोग्राम जिहड़ा चलेगा सिर्फ अधे घंटे लिए चलेगा, जो कि 2:30 से उस तो बाद आवेगा साडा प्रोग्राम उमंग, जो कि दिल्ली तो प्रसारित होगा। उस तो पहला गल करते हैं साडे सरोते दी शायरी बारे। वेल गुड आफ्टरनून रमनीश सर, कुलविंदर टेलर VPO कंडोला नियर आदमपुर तो लिख रहे ने कि हर कली खिलकर गुलाब नहीं होती, हर प्याले में शराब नहीं होती, झूठी उम्मीद पर ताजमहल बनाने वालों, झूठी उम्मीद पर ताजमहल बनाने वालों, हर महबूबा मुमताज नहीं होती। क्या बात है जी, वाह क्या बात है जी, कुलविंदर जी कमाल ही करती, कमाल ही करती। उस तो बाद साडे बहुत ही प्यारे राम स्वरूप अरोड़ा चौंक चिल्लिया सुल्तानपुर लोधी तो लिखिया ने कि नमस्कार रमनीश सर, आफ्टर लवली एंड स्वीट वेट वेलकम इन शो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वाल दो फोटो भेजियां अपना राम स्वरूप जी ने, दे दे की लिखे। लिख रहे ने कि दिल को समझाया समझ गया, तरके तालुक हो भी गया, कमबख्त नजर को क्या कहिए, कमबख्त नजर को क्या कहिए, हर बार उधर ही हो जाती है। क्या बात है जी। एक बार एक और भेजी इन्होंने, लेकिन देने कि इस बात को भी

बीते जमाना गुजरा। एक बात से तकलीफ मुझे होती है, इस बात को बीते जमाना गुजरा, इस एक बात से तकलीफ मुझे होती है कि गई जिनके लिए तरके तालुक मुंह से, पा लिया उस अब मेरे लिए रोती है। देखो जी, साढ़े स्रोत कई होंगे ना, आप कहें ना अपनी हैंडराइटिंग स्रोतों की बड़ी कमाल की होंगी। वैसे साढ़े अब जो डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग होंगी ना, साढ़े राम स्वरूप जी भी बड़े कमाल की तरह, असल पता लगता है कि एक शायर ने लिखा होंगे ना, जिदा आया है, लिखना पसंद करते हैं उस लहजे ने लिखा है। बहुत ही कमाल राम स्वरूप जी, कमाल करती तुसी, एंड बहुत बहुत धन्यवाद, तुसी हर वेले इन्ना ज़्यादा प्यार देंदे हो सानू। उस तो बाद मेन बाजार पिंड चौके जिला बठिंडा तो बसंत सिंह टेलर बेटा नवदीप सिंह जस्सल, ओके जी, लिख रहे ने कि हर पल बैठा रहा सामने, तेनू तकिया दिल ना भरदा ए, तेनू अखा विच वसा के पलका बंद करा, दिल सच्ची मेरा ओए करदा ए, तेरे बाजू तक्का होर कोई, दिल मेरा ना हामी यह भरदा है, जिवें काजी नू राम सीता वाली, जिवें काजी नू राम सीता वाली, उंज रस्ता मैनू तेरे घर ए, यह अमानत है सदा तेरी, यह अमानत है सदा तेरी, जस्सल सिर तेरे कदमा वे दे विच तरता है। क्या बात है जी, क्या बात। साढ़े बसंत सिंह टेलर जी ने लिख के भेजे, बहुत सोहना बसंत जी, कमाल करती बसंत सिंह टेलर, वाह अलग ही नाम है थोड़ा, बसंत सिंह। उत्पाद है सत श्रीकाल दिल शायर रमनीश जी बलविंदर सारा पिंड मोरजंड सिखा हनुमानगढ़ तो लिखते ने कि कुछ एहसासों के साए दिल को छू जाते हैं, कुछ एहसासों के साए दिल को छू जाते हैं, कुछ मंजर दिल में उतर जाते हैं, बेजान गुलसन में पी फूल खिल जाते हैं, बेजान गुलसुन में भी फूल खिल जाते हैं, जब जिंदगी में आप जैसे दोस्त मिल जाते हैं। आए क्या बात है, खुश करता जी। देखो जी, क्या कमाल दी होंदी ना, देखो जो तुसी नोट किता होना दोस्तों, जो आप शायरी पढ़ते हैं किसी की भी सुनते भी है ना, तो की होंगे ना, पहला नॉर्मल कई वे बस सुनते होंगे, तो कई वे लाइन इदा ही ना अनोखे जी आते ना, जी चेहरे की मुस्कान लिया देंगे, क्या बात है जी, जिदा ना अस शर्मा जाने होंगे कुछ उदा तरीके, क्या बात है जी, कमाल करती जी अपने बलविंदर सरा जी, कमाल जी। उस तो बाद एक सरोतिया ने सानू भेजी, गुड आफ्टरनून सर, रिटन बाय गगनप्रीत कौर, लिव इन टांडा, ओके तुसी लिव इन टांडा, मैं लिव इन जी FM 102.7 तो जी, लिख रहे ने कि तू खास है यही तो एहसास है, हम तुझे देखते हैं हर रोज, पर तू दूर होकर भी पास है, ओह क्या बात है जी। आगे पढ़ना, वो तो ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूं, वो तो ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूं, पर उसकी मौजूदगी भी मेरे हर जख्म का लिबास है। क्या बात है जी, क्या बात है। देखो जी, शायरी पढ़ते ना एक्सप्रेशन भी उधर हो जाते, जो कहना ना मैं एक्सप्रेशन सीखना चाहना, जरूर सीखे, शायरी पढ़िया है, दर्द के एक्सप्रेशन अलग हो जाते, हसीले एक्सप्रेशन अलग हो जाते दोस्तों, तुम नोट करियो। उस तो बाद साढ़े पाली ने भेजा, सिर्फ पाली लिख के, पाली जो कि सबू पाली जी पता कि बड़े फेमस ने, इसलिए पाली ओनली पाली नाम ठीक है जी। लिख रहे ने कि अखा विच तेरी तस्वीर होवे, जिंदगी दी हर तकदीर होवे, रब करे उमरां लंबियां होवन, रब करे उमरां लंबियां होवन, बस हत्था विच तेरे हाथ दी लकीर होवे। आए हाय हाय, क्या बात है जी, मैं तो लगता जी ना प्रोग्राम शायरी वाला तो ना एक महफिल जी जम रही है, बस असी उन्हें पढ़ दे रही है, तो तुसी सुनते रहो सुनते हो। अथवा साढ़े आज दिला शार है मिस हो जाए तो इसे दोबारा सुना जा सकता है क्या, तुसी रिकॉर्ड कर सकते हो अपने रेडियो ते दोस्तों इसनों, ताकि तुसी सुन सको। उस तो बाद साढ़े है

अगले सुरोते लिख रहे हैं कि छोटी छोटी बात पर नाराज नहीं हुआ करो, कोई गलती हो तो माफ कर दिया करो। नमस्कार, मिर्जापुर कुरुक्षेत्र से यशपाल धीमान, धर्मपत्नी श्री मती कृष्णा धीमान। आए दोस्तों यार, तू सिक्की कर दो। वाह क्या बात है, मतलब अच्छा मूड चल रहा है। सिक्को तो अपना नाम आने शुरू हो गए यार। अच्छा अच्छा अच्छा, खत्म हो गई शायरी, इदा होया सी। वेल, बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा सुरोते हो। उस तो बाद अपा गल कर रहे सी दोस्तों, जिदा ना जिहड़ा अपा शायरी जो पढ़ते ना, एक महफिल जिदा लग रही फील हो रहा सी, है ना जी। शायद दोस्तों थानू भी फील होंदा होवे, क्योंकि तुहाडी शायरी खुद पढ़ी ते आए है। क्या कमाल लिखा है, कई वेले लगता ना यार क्या कमाल लिखा। तो दोस्तों एक जरूरी सोचना थानू देना चाहना कि असी आकाशवाणी जलंधर जिहड़े FM रेनबो चैनल 102.7 MHz तो बोल रहे हाँ कि हेडलिंगली लीड्स इंग्लैंड विखे ICC वूमेन्स T20 वर्ल्ड कप तहत भारत ते जिहड़ा नैदरलैंड दियां महिला टीमां विचकार खेडे जाण वाले T20 क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री अपने दिल्ली केंद्र तो शाम 6:30 तो सुनोगे। पर FM रेनबो ते प्रोग्राम तुसी FM रेनबो ऐप तो सुनते रहोगे दोस्तों। सो ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। वैल प्रोग्राम चल रहे दिलाश शायर, तो कुछ ही मिनट का प्रोग्राम रह गया दोस्तों। मैं चाहता तुम अपन बेहतरीन कमाल दी शायरियां होर भेजो ताकि असी पढ़िए, तो इस माहौल ना बस आप ठंडा ना पैन दिए दोस्तों। लो जी अगली पेशकारी जगजीत सिंह की आवाज़ में।

दोस्तों प्रोग्राम चल रहा है दिलाज शायर है तो मैं थोड़ा अपना आर्ज दोस्त रमनीश साढ़े जरूरते थानू सानू धन्यवाद भी कह रहे हैं कि तुसी इन्नी इन्नी प्यारी प्यारी सोहनिया सोहनिया शायरियां पढ़िया वैल थोड़ा धन्यवाद सारे स्रोत्या जिन्होंने इन्नी प्यारी प्यारी शायरियां भेजिया। उतो साढ़े दोस्त पवन कुमार पिंड प्याला तो लिख रहे हैं कि बंदिया जे कोई तेनू बुरा बना के आप चंगा बनता है, बंदिया जे तेनू कोई बुरा बना के आप चंगा बनता है तो तू गुस्से च आके ना उसनू माड़ा ना बोली, आए जे तू सच्चा है तते जे तू सच्चा है तेरा बग्गे तेरा रोना भी ना उसनू दबोगा। ओके क्या बात है सुरोते, क्या बात है दोस्तों। प्रोग्राम चल रहा है दिलाज शायर है तो बस कुछ ही मिनट्स का साडा प्रोग्राम रह गया है। वैल उस तो पहला थानू एक प्यारी जी गलबात करदा शायरी बारे। कहिंदे ना उड़ीका दी सलीब उत्ते टंग्या मैं, हर सां तेरा नाम चपदा मैं, तू ना आया पर तेरा इंतजार आया, मेरे दिल दे वेड़े च चन्न तारे लियाया। दोस्तों इश्क च ना उड़ीक सजा नहीं है, इबादत बन जाती है। जदों महबूब नहीं हुंदी या नहीं आउंदा उहदा इंतजार ही साडा महबूब बन जाता है। लाइना दसदिया है कि उड़ीक च ना एक नूर हुंदा है जिहड़ा दिल दे हनेरे च चानन कर दिंदा है। दोस्तों शायरी ना जिद्दां कहिंदे ना उड़ीकना भी एक नशा है, जिसनों छड्डना सौखा नहीं, मिल जावे ता स्वर्ग ना मिले ता भी दर्द च रब मिलदा नहीं। उड़ीक दा सब तो वड्डा जिहड़ा फलसफा यह है कि दोस्तों कि यह आस ते निराशा दोवां नूं इकट्ठा लैके तुरदी है। जे महबूब मिल जावे ता दुनिया जन्नत है, ते ना मिले ता उही दर्द रब नूं मिला देंदा है। एक होर दोस्तों कड़ी दी टिक टिक सुन के डर लगदा कि कड़ी दी टिक टिक सुन के डर लगदा किते वक्त तेनू मेरे कोल खो ना लवे, कि कड़ी दी टिक टिक सुन के डर लगदा किते वक्त तेनू मेरे कोल खो ना लवे, मैं हर पल तेरे आउण दी

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। करते हैं शुरू एक सुंदर विचार से जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
2: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: लानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
1: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूँ। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हाँ श्रोताओं, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि ये झील है कहाँ। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला

से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओं, इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत, हिमनदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओं। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहां गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है,

0: नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है, जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओं। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहाँ गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इस झील का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहाँ तक धर्मों की बात है, ये झील हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। श्रोताओं, एक और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है, मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभ देव से जोड़ा जाता है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओं, यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियां भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। ये झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहाँ तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओं, अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त, लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियाँ प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
2: दादी जी।
3: अरे आशीष, दीपिका, आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
2: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
3: हाँ पूछो।
2: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
3: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है, जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
2: अच्छा।
3: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे।
4: ओह,
3: अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। क्योंकि सभी देशवासी

0: ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
1: अच्छा।
0: यानी आजादी आजादी आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए।
1: ओ,
0: उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
2: अच्छा।
0: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
1: ओ, मंगल पांडे।
0: हाँ, मंगल पांडे। 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
2: अच्छा।
0: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

0: दादी जी, लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
2: बड़े बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
2: वो कहाँ के रहने वाले थे?
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
2: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
2: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
1: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
2: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
1: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
0: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
0: ऐसा क्यों?
1: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
3: अरे, अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर

0: लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
1: दादी फिर क्या हुआ? फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
0: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
2: फिर क्या हुआ दादी?
1: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई।
2: ओ,
1: सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
2: फिर क्या हुआ दादी?
1: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
2: अच्छा?
1: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
3: हमें कुछ करना पड़ेगा, ऐसे ऐसा चल नहीं सकता, नहीं कुछ।
2: उसके बाद क्या हुआ?
1: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
4: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे तीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे,
5: नहीं होने देंगे, बिल्कुल
4: नहीं। हमें फांसी के तख्ते पर झूलना पड़े,
5: बिल्कुल
1: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
4: भाइयों उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ, भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
1: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
6: हम पांडे को अरेस्ट मांगता है।
7: मंगल पांडे जिंदाबाद, मंगल पांडे
8: जिंदाबाद,
7: इंकलाब
8: जिंदाबाद,
7: इंकलाब
8: जिंदाबाद।
1: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉम आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
9: ए मंगल पांडे, वॉच आउट!
1: सारी छावनी में खलबली मच गई।
2: उसके बाद क्या हुआ दादी?
1: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
4: अरेस्ट करो! मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे।
2: दादी जी,

0: फिर क्या हुआ?
1: कर्नल व्हीलर वहाँ से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली। और मंगल पांडे जमीन पर गिर पड़ा।

0: Hum, bande ko, ti kona mangta hai. Durant, hospital bhejo.
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
3: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूं।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
4: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
2: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
4: इसके बाद क्या हुआ दादी?
2: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
4: अच्छा।
2: इस कविता में क्रांतिवीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
5: जब संतावनी के रारी भैली वीरन के वीर पुकार भईल, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भईल, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मशहूर चलल, गुरनी का पलटनी का आगे बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भईल, जननी के भेंट परान भईल, आजादी का बल बेदी पा मंगल पांडे बलिदान भेल, जब संतावनी के रारी भैली वीरन के वीर पुकार भैली।
4: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
2: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
4: अच्छा।
2: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तानकर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।

0: से मुक्त करना चाहता हूं।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशी का।
2: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है, जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुरी को विस्तार से बताया गया है और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
3: काशु बेटी, तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
4: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
3: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
4: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
3: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
4: अच्छा माँ।
5: माँ,
4: लो देवेंद्र भी आ गया।
5: दीदी, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
3: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
4: ठीक है माँ।
5: नाश्ता नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठकर खाऊंगा।
4: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
5: ये देखो दीदी, ये मारा।
4: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
5: अरे ये मारा।
4: अच्छा, तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
5: बंद कर दिया होगा, ये तो देखो।
4: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
5: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
3: लगता है कोई आया है। काशु बेटी, देखो दरवाजे पर कौन है।
4: अच्छा माँ, कौन? आप लोग कौन? कहिए किससे मिलना है। अरे
6: हमें अंदर आने दो।
4: अरे क्यों?
7: ए लड़की, रास्ते से हट जा।
4: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
6: लड़की हट।
4: माँ,
6: ये चाकू देख रही है ना?
7: ज्यादा होशियारी मत दिखा।
4: अरे
7: मैं इस बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा। हट रास्ते से।
4: क्या हुआ? देखो जल्दी।
3: ये क्या है? अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
6: ए शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
4: हाँ, मेरी माँ को छोड़ दो।
6: ये चाकू देख रही है ना?
4: छोड़ दो। नहीं, मेरी माँ को कुछ मत करो।
3: चाबी चाबी मुझे नहीं मालूम।
6: जल्दी,
3: याद नहीं कहाँ रखी है।
7: ये बहाने बाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
3: अरे मेरे बात छोड़ो,
4: मेरी माँ को छोड़ो।
6: चुप चुप, आवाज से गाली तो यही ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
7: सुनो सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
3: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
4: देवेंद्र।
8: हाँ दीदी।
4: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
8: हाँ।
4: पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र, तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
8: अच्छा।
4: हेलो।
6: हाँ बेटा बोलो।
4: पापा।
6: हाँ।
4: पापा।
6: हाँ, बोलो बेटा।
4: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसाए हैं।
6: कौन घुसा है?
4: माँ को बहुत मार रहे हैं।
6: अच्छा तुम घबराओ नहीं। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है?
4: अब देवेंद्र, मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
8: अच्छा।
4: बचाओ।
9: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की।

0: इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
1: कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको कशिका को। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
2: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था। मैं तो डरी गई थी।
3: ऐसे बच्चे होने चाहिए,
1: देखो ना सबकी जान बच गई।
2: बहादुर है मेरी बच्ची।
0: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1,000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहादुर कशिका, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: रेडियो डॉक्टर, नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। ये हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम जिसमें हम स्वास्थ्य से जुड़े हुए विषयों पर बात करते हैं, समस्याओं पर बात करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय है, वो है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जिसे स्पॉन्डिलाइसिस भी कहा जाता है। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं वो डॉक्टर बी एस डबास हैं, जो कंसल्टेंट हैं आयुर्वेद CGHS न्यू दिल्ली में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में।
3: धन्यवाद मैडम।
2: और ये प्रोग्राम आप लाइव सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो पर। इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से प्रसार भारती ऐप और न्यूज ऑन AIR पर भी आप हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो आज अगले एक घंटे तक लगभग हम इस विषय पर बात करेंगे, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। हम एक सवाल से शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब। जब हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की, तो सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं।
3: मैडम, इसमें ये है कि जो नेक हमारी वो स्टिफ हो जाती है, उसकी मूवमेंट बंद हो जाती है और बड़ा सीवियर पेन होता है। धीरे धीरे वो पेन जो है हाथों की तरफ भी जाता है, कंधों की तरफ भी जाता है। तो ये तकलीफ जो है रॉन्ग पोस्चर जो हमारा है, मतलब गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से यूज करना, जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं, गर्दन मोबाइल में गर्दन झुका लेते हैं और लगे रहते हैं उसमें लगातार घंटों घंटों। ऐसे ही आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो भी गर्दन नीचे करके काम करते रहते हैं, या इवन के हमारी महिलाएं जो सड़क पर चलती हुई हैं, हमारा ज्यादा गर्दन नीचे करके चलती हैं। तो ये सब कारण ऐसे बनते हैं कि गलत पोस्चर, रॉन्ग पोस्चर जो है हमारा इसको पैदा करता है 99% केसेज में। और ये ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो सकता। हम तो आयुर्वेदिक एक व्यायाम कराते हैं, साथ में कुछ दवाई देते हैं, हम पेशेंट को तुरंत 5 मिनट में हम पेशेंट को रिलीफ करा देते हैं।
2: क्या बात है।
3: हम ऑनलाइन भी करा सकते हैं यहाँ पे, अगर पेशेंट इंटरेस्टेड होंगे तो हम बताएं क्या इस तरह से खड़े हुए, ये करिए ये करिए, तो पेशेंट विल गेट रिलीफ विद इन 5 मिनट्स।
2: तो कार्यक्रम की शुरुआत में आपने चीजें बहुत आसान कर दी हैं। अक्सर हम कहते हैं कि जब आपका शोल्डर या नेक स्टिफ हो गया है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उसकी वजह से। डॉक्टर साहब, ये हम थोड़ा समझें आपसे कि किसी भी एज में हो सकता है, किसी को भी ये समस्या हो सकती है।
3: हाँ, किसी भी एज में हो सकता है, पर जनरली रॉन्ग पोस्चर से ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी क्रिएट होती है। बाकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हड्डियों में कुछ चेंजिंग आ जाता है, उसे भी पेन वेन होता है। पर जो लोग एक्टिव रहते हैं, यानी घूमते फिरते एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं, वो फिट रहते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो सभी को होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा आलस्य जो है बीमारी पैदा करता है, लेजीनेस, गलत पोजीशन में लेटना, ऊंचे ऊंचे तकिया लगाना सिर के नीचे, तो वो सारी चीजें इनको इन्वॉल्व होती है, सब इसको बढ़ाते हैं बीमारी को।

जी, तो मतलब ये समस्या का निदान हमारे पास है, देखना ये कि कैसे उसका निदान हम करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी हमारे पास जो है जो मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं, लेकिन उनको भी हम शामिल करेंगे। तो दोस्तों, आप भी अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, स्टूडियो से मैं तपस्या तो हमारे डॉक्टर साहब से सवाल कर ही रही हूं, आपके भी सवाल उनको तैयार रखिएगा। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में एक अच्छा सा सॉन्ग पहले आपको सुनवाते हैं।

0: रेडियो डॉक्टर में दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में और हमारे साथ हैं डॉक्टर बीएस डबास जी। डॉक्टर साहब हमारे साथ कॉलर हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी, आपका स्वागत है रेडियो डॉक्टर में, सवाल पूछिएगा।
1: जी मैं मोहम्मद जावेद मेरठ से बात कर रहा हूँ। मैडम मैं ये कह रहा हूँ जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हमारी गर्दन में थोड़ा दर्द रहता है।
2: हाँ सो के उठते हैं दर्द रहता है तो इसका मतलब आपका जो पोजीशन है सोने की वो ठीक नहीं है। हो सकता है आप एक साइड में गर्दन कर सोते हो, बीच में करौंट ना लेते हो सकता है आप ऊंची तकिया लगा रहे हो, है ना, उससे भी हो सकता है। हो सकता है शाम के टाइम आपने कोई ज्यादा ठंडी चीजें का सेवन किया हो, उससे भी अकड़न हो सकती है। तो ये बहुत सारी कारण हो सकते हैं इसमें, वो कौन सा कारण है तो आप बताएं क्या करते हैं आप। आपको कॉन्स्टिपेशन होगा तब भी आपको पेन हो सकता है, उसमें वात का प्रकोप होता है, आपकी जो उम्र है वो भी एक फैक्टर है, अगर एज ज्यादा होती है तो वायु का प्रकोप होता है तो पेन हो सकता है।
0: डॉक्टर साहब ये हमारे पास एक मैसेज भी आया हुआ है, ये नेहा है मुंबई से, लिखती है कि मेरी एज 34 इयर्स है और मैं डेस्क का जॉब करती हूँ पिछले 10 सालों से। मेरे नेक में पेन है, शोल्डर्स में पेन है, लोअर बैक में पेन रहता है और शोल्डर्स जो है वो स्टिफ रहते हैं।
2: हाँ तो ये हो सकता है ये सर्वाइकल ही हो। आप अपना एक्सरे सीटी स्कैन एमआरआई अगर कराएं तो उसे कन्फर्म करें कि आप सर्वाइकल ही है। अगर आपको सर्वाइकल है और आप मेरी बात अभी सुन रहे हैं अच्छी तरह, तो मैं आपको एक एक्सरसाइज बता सकता हूँ। आपको 5 बार आप करोगे अभी 2-2 मिनट का गैप देकर तो आपको अभी रिलीफ मिलेगा। आप खुद ही बोलेंगे हाँ मुझे रिलीफ हो गया। देखिए अब सुनिए तरीका, आप सीधी खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद में दोनों हाथ सामने करिए अपने चेस्ट के सामने, हथेली नीचे रहनी चाहिए। उसके बाद में दोनों हाथ बॉडी के साथ साइड में करिए जैसे पीटी करते हैं,

0: उसमें भी हथेली नीचे होनी चाहिए। अब दोनों हाथ जो है आपके पीठ के पीछे जाएंगे, बटक्स के ऊपर दोनों हथेली मिलाइए और उंगलियों से लॉक करिए आपस में। अब सीधी खड़ी रहिए और दोनों हाथों को नीचे खींचिए लॉक किए हुए, पूरी ताकत हाथों में डाल दीजिए। अब जब हाथ आपके खींच जाएं, तब जब तक मैं ना कहूँ हाथ ढीले नहीं करने, आप गर्दन को पीछे की तरफ लीजिए, आप जितनी जा सकती है उतनी, आंखें खोल के रखना और 30 तक काउंटिंग करनी है आपको। 30 तक काउंटिंग मतलब आधे मिनट। जब आपको ये काउंटिंग 30 तक करेंगे, उसके बाद में पहले गर्दन सीधी करनी है आपको, फिर हाथों को बिल्कुल धीरे धीरे ढीला करना है, साइड में वापिस लाना है, साइड में यहाँ 7 तक काउंटिंग करनी है, फिर सामने लाना है, 7 तक काउंटिंग यहाँ करनी है और फिर हाथ नीचे करने हैं। उसके बाद बॉडी को रिलैक्स करना है, फिर उसके बाद आप बैठ जाइए। 2 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद दोबारा करिए, ऐसा आप 5 बार करो। अभी हम बैठे हैं रेडियो पे और आप अपने मुंह से बोलो कि हाँ मुझे रिलीफ हो गया है, ये फिर आप लगातार इसको करते रहिए, आप ठीक रहेंगे। पोस्चर अप, क्योंकि आपका काम ऐसा है कि इसमें चांसेस होते हैं, इसलिए सुबह शाम इसको रिपीट करते रहो, देन यू विल बी ऑल राइट। नो नीड टू गो एनी डॉक्टर, नो नीड टू गो एनी हॉस्पिटल। और ये आपको बताऊं, जो ये लोग बाकी लोग जो कराते हैं, वो कभी राइट को अंदर मुड़वाते हैं, कभी लेफ्ट को, इधर प्रेशर डालो इधर पर, ये तो सब एक अलग चीज है, मैं उसके बारे में कोई कमेंट करना नहीं चाहता। पर मैं, क्योंकि जो असली रीजन है हमारा सर्वाइकल का, वो गर्दन आगे झुका के काम करने का है, हम उसको रिवर्ट कर रहे हैं, यानी जो आपने गलती की है उसको सुधार रहे हैं, उससे आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, हमारी गारंटी है। 99.9% पेशेंट को हम ठीक कर देते हैं, ऑनलाइन भी फोन पे ठीक कर देते हैं, आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।
1: बहुत बढ़िया, ये तो सब बहुत अच्छी बात आपने बताई कि इसमें कोई दवाई की जरूरत नहीं है और कोई साइड इफेक्ट का इशू नहीं है, आप सीधा एक्सरसाइज करके खुद अपने पोस्चर ठीक करके जो है सर्वाइकल को दूर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। कॉलर हमारे साथ हैं, उनको लेते हैं अभी लाइन पर। हेलो।
2: हेलो
1: जी, आपका स्वागत है रेडियो डॉक्टर में, सवाल पूछिएगा।
2: नमस्ते मैम।
1: जी नमस्कार,
2: मैं राजकुमार बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: जी सवाल पूछिएगा, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको।
2: नमस्ते डॉक्टर साहब।
0: नमस्कार जी।
2: डॉक्टर साहब मेरा नाम 56 साल की उम्र है
0: जी,
2: और ये 19 से ज्यादा महसूस हो रहा है मेरे को, मतलब
0: क्या महसूस हो रहा है,
2: मतलब ये मेरा जो है ना, मेरे हाथ पैर लेफ्ट साइड का हाथ और पैर ना थोड़ा भरीट ना, और ये उठता कम था, पहले इतना महसूस नहीं होता था, अब ज्यादा हो रहा है, और मेरे को 3-4 महीने पहले ना बुखार हो गया था, तो उससे ना मेरे को और ज्यादा भारीपन हो गया है, मतलब लेफ्ट साइड का हाथ पैर पे दिक्कत आई, मैं 4 महीने से 3 महीने से दिक्कत
0: नहीं। देखो अगर हाथ पैर नहीं उठ रहे थे आपको सर्वाइकल के अलावा, ये फ्रोजन शोल्डर भी हो सकता है, कंधे जिसे बोलते हैं कंधे जाम है, उसके लिए भी कुछ एक्सरसाइज करनी होती है। देखिए जितने भी जॉइंट्स की प्रॉब्लम है ये सब एक्सरसाइज करने से ठीक हो सकते हैं, दवाई तो टेम्परेरी काम करती है।
2: मैंने 3 MRI भी कराई है, मैंने जी भी
0: बनाया। क्या निकला उसमें MRI बताइए आप।
2: वो बता रहे हैं जी सर्वाइकल के गर्दन की हड्डी में नस करी है।
0: अगर सर्वाइकल का है तो मैंने अभी अभी एक्सरसाइज बताई, आपने सुनी भी होगी, आप उसको करिए, आप अभी करिए, अभी हम रेडियो पे बैठे हुए हैं, आपको 5 बार करते ही आराम आ जाएगा। अगर पेन है तो देखिए सुनिए, ये तो एक्सरसाइज होगी, दूसरा अगर आपको पेन है सुनिए, दर्द नहीं है बिल्कुल, खाली स्टिफनेस है, अकड़न है ना,
1: भारीपन के,
0: तो आप ये भारीपन उसमें आराम आ जाएगा ना, आप करिए इसको बस। देखिए कोई भी ठंडी चीज आपको नहीं खानी, चावल दही लस्सी मूली नींबू फ्रिज का पानी आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स, जो ठंडी चीजें हैं उनसे सारे सारे से ना अकड़न बढ़ेगी, ठीक है। तो इसलिए ठंडी और वायुवर्धक चीजें आप अवॉइड करिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, और ऑयल जो है हमारे जो है महानारायण तेल, हमारा अक्षीरबला तेल है, पंचकुण तेल है, आप उसको लगाइए और कोशिश करिए एक्सरसाइज करने की, आपकी हल्कापन भी हो जाएगा, खाने का परहेज विशेष तौर से रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि स्टिफनेस उसी से आती है आपकी ठंडी चीजों से, ठीक है।
1: डॉक्टर साहब यहाँ एक सवाल मन में आ रहा है कि आपने अभी जिक्र किया बार बार कि ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए, पहले आपने कहा कि शाम के वक्त नहीं खानी चाहिए, तो अभी दिन भर में कभी भी खाने से असर हो सकता है।
0: बिल्कुल, ठंडी चीजें तो देखिए जो भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री है
1: जी।
0: अगर हम ज्यादा ठंडी चीजें खाते हैं तो बॉडी के साथ मैच नहीं करता ना, तो क्या करता है वो ठंडा भोजन हमारे डाइजेशन को वीक कर देता है, कमजोर कर देता है, जो हमारी अग्नि है शरीर की वो कम हो जाती है, अग्नि जो है हर चीज को जला देती है, पावरफुल अग्नि, तो जब अग्नि कम हो जाएगी तो मेद की वृद्धि होगी है ना, और ये वात और कफ की वृद्धि हो जाएगी, तो उससे जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसलिए ठंडा तो भोजन या आइसक्रीम वगैरह तो हमारी हेल्थ के लिए शूट नहीं करती, पर क्योंकि अच्छी लगती है इसे लोग खा रहे हैं, पर कम से कम ओल्ड एज में थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए
1: जी। यहाँ सवाल आपसे और लेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन अभी यहाँ पर जो मैसेजेस आ रहे हैं उसमें से एक मैसेज हम ले लेते हैं। उमेश कुमार हैं खयाला से, आप लिखते हैं कि नमस्ते डॉक्टर साहब जी और मैडम को, मुझे बार बार चक्कर आते हैं, तो चक्कर आना क्या सर्वाइकल का लक्षण है।
0: हाँ सर्वाइकल में चक्कर भी आ सकते हैं, सर्वाइकल में चक्कर आ सकते हैं, पर चक्कर तो और भी कई कारण से आ सकते हैं, मान लो आपका हीमोग्लोबिन कब तक चक्कर आ सकते हैं, आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो भी आपको चक्कर आ सकते हैं, तो चक्कर आने की बहुत वजह हो सकती है, तो ये एकदम ये कह देना कि सर्वाइकल का ही है, सर्वाइकल की तो मैंने एक्सरसाइज बताई है, इसको करिए आप, अगर सर्वाइकल से होगा तो आपको रिलीफ मिल जाएगा, ये मैंने अभी मैंने उनको बताया है, आप करके देखिए इसे, बाकी अगर आप इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो आपका एक्सरे है, MRI है, CT स्कैन वगैरह करा

0: उससे कन्फर्म हो गया सर्वाइकल है नहीं आपको, ठीक है ना। तो ये आपको करना पड़ेगा। और बाकी कोई पेन वेन है आपको तो पेन के लिए कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ आती है, हमारे पुनर्वादी गूगल आता है, योगराज गूगल आता है, त्रोदशांग गूगल आता है, बहुत सारी दवाइयाँ आयुर्वेद में, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो।
1: जी, कुछ ऐसी दवाइयां जो कॉमनली कोई भी यूज कर सकता है उसके बारे में अगर आप बताना चाहें।
0: अब डिपेंड करता है मैडम, अब ये तो नहीं कि हर चीज हर आदमी उससे इस्तेमाल कर
1: जी
0: सकता है।
1: जी
0: वो देखिए उसमें एज भी मैटर करता है, वात पित्त कफ कौन सा उसका जो दोष ज्यादा है उसके वो भी मैटर करता है, एज भी करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसका। फिर वेट वेट वेट भी करता है, अगर बॉडी हैवी है तो डोज ज्यादा देनी पड़ेगी, अगर वीक है तो उसके हिसाब से डोज कम होगी। तो सारी कई सारी चीजें होती है जो पेशेंट के सामने बारे में पता चलता है।
1: जी और सर, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं आज की आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या हो सकता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का, तो आयुर्वेदा में स्पेसिफिक इसके लिए कुछ, मतलब ऐसे जैसे आपने एक्सरसाइज बताई है अभी, कुछ और चीजें ऐसी हैं?
0: देखिए आयुर्वेद में हम जो है जैसे मान लीजिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में थोड़ा सा स्वेलिंग आती है, तो उसके लिए हम पुनर्वादी गूगल है, मंडूरादि गूगल है, ये आप पुनर्वा मंडूर है, पुनर्वासो है, ये ऐसी चीजें दे सकते हैं। साथ में पेन के लिए हमारे पास बाम भी आता है, ऑयल भी आते हैं, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने पीने में अगर हमें देख रहा तो अगर आवश्यक है तो हम उसके लिए लाक्षादि गूगल आता है हमारा जो हड्डियों को मजबूत करता है, वो दे सकते हैं।
1: जी, एक डॉक्टर साहब अभी मैसेज हमारे पास आया है जिसमें नरेंद्र श्रीवास्तव हैं पटियाला से, कहते हैं गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब, और मैं ये कहते हैं कि मैं सीधा सोता हूं और लेफ्ट शोल्डर की तरफ गर्दन में कभी कभी तेज और कभी हल्का दर्द होता है, क्या ये सर्वाइकल हो सकता है?
0: देखिए सीधा सोने में एक्चुअली पूरे रात तो सीधा नहीं सोना चाहिए, करवट तो बदलना चाहिए आदमी को, क्योंकि एक पोजिशन में आप रहते हैं तो बॉडी जो है थोड़ा रेज हो जाती है। तो कभी सही तरीका तो ये है, आप पहले सीधे सीधे लेटिए, फिर राइट को लीजिए, उसके बाद लेफ्ट को लेकर सोइए आप। तो सही जो प्रॉपर आयुर्वेद में जो तरीका बताया सोने का उसको इस्तेमाल करिए ना आप। आप एकदम क्यों ऐसे रहते हैं जैसे आदमी, अब क्या कहें, मतलब एक जैसे मान लीजिए कोई आदमी ऐसा एक पोजीशन में रहेगा तो खंभे की तरह हो जाएगा, तो इसलिए पोजीशन बदलना जरूरी है। और जहां पर अगर पेन है तो उसके लिए आप कोई भी आयुर्वेदिक दवाई ले सकते हैं, बहुत दवाई आती है आयुर्वेद में, पेन के लिए आते हैं, ऑयल आते हैं बहुत, तो इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा ठंडी चीज खाने का अवॉइड करिए आप।
1: जी, आज हम दोस्तों बात कर रहे हैं रीरो डॉक्टर में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। तो स्पॉन्डिलाइटिस की जो हम बात कर रहे हैं, सर्वाइकल की बात कर रहे हैं, इससे संबंधित आपकी कोई भी समस्या या प्रश्न हो, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, तो डॉक्टर बी एस डबास जी से हम आपका वो जो सवाल है उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको एक अच्छा सा सॉन्ग सुनवाते हैं।

0: रेडियो डॉक्टर सुन रहे हैं आप और आज इसमें हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। हमारे साथ हैं एक्सपर्ट डॉक्टर बी एस डबास जी। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ हैं, देखते हैं कौन है लाइन पर। हेलो।
1: हाँ जी, हेलो
0: जी, नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो डॉक्टर में।
1: हाँ जी, मैं हरपाल सिंह सैनी बोल रहा हूँ, गाँव सोनपुर से।
0: जी जी, सवाल पूछिएगा।
1: सवाल तो मेरा यह है, जब नींद में काम करता हूँ तो कमर में दर्द होता है, धीरे धीरे सीधा होता हूँ मैं।
2: आगे आगे झुकने से बढ़ता है क्या?
1: जी, आगे झुकने से मतलब मेरा जैसे नींद में खेती का काम करता हूँ जी मैं।
2: वो तो ठीक है, पर जैसे आप आगे की तरफ झुकते हो कोई काम करने के लिए तो क्या दर्द बढ़ जाता है क्या?
1: हाँ, कमर में नीचे की तरफ दर्द बढ़ता है, फिर धीरे धीरे सीधा हूँ।
2: हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आपके ना डिस्क की प्रॉब्लम है, कोई नस आपकी दबी हुई है वहाँ पे, उसके लिए आप जो करते थे ना, जैसे पहले दंड लगाते थे, दंड लगाते थे, समझ रहे हो, दंड लगाना। तो ऐसे ही मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ, अगर आप अभी घर में हैं तो दीवार के ऊपर सीधे खड़े हो जाइए और अपने कंधों की सीट में दीवार पर दोनों हाथ रखिए।
1: अच्छा,
2: रखिए,
1: ठीक है जी।
2: और पैरों से दूर हो जाइए दीवार से, जैसे जैसे सीढ़ी होती है, जो जीना होता है लक्कड़ का, इस पोजीशन में खड़े हो जाइए।
1: अच्छा,
2: समझ रहे हैं मेरी बात आप?
1: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
2: अभी अभी इस पोजीशन में खड़े हो गए आप, आपके हाथ दीवार पर हैं और पैर आपके दीवार से दूर हैं, ठीक है? तिरछे खड़े हो गए ना आप, ऐसे जैसे सीढ़ी की तरह। अब गर्दन को ऊपर उठाइए, गर्दन को ऊपर उठाइए और पीठ को आगे की तरफ दबाइए, बीच का हिस्सा जो पीठ है उसको आगे की तरफ दबाइए। तो इससे आपको जो है कमर में थोड़ा खिंचाव आएगा, गर्दन ऊपर उठाने से सर्वाइकल में आराम आएगा, और जब पीठ को आगे दबाएंगे तो कमर में थोड़ा खिंचाव आएगा। कर रहे हैं आप ऐसे? कर रहे हैं क्या अभी?
1: हाँ जी, कर रहा हूँ, कमर में खिंचाव।
2: हाँ, तो अभी इसी पोजीशन में खड़े रहिए, थोड़ी देर में ये थोड़ा सा आपको खिंचाव बढ़ेगा, और जैसे ही आपको खिंचाव बढ़ने लगे, फिर 10 तक, 20 तक, 30 तक, जैसे आपकी हिम्मत हो, इतनी काउंटिंग करनी, इतनी गिनती करनी है, और उसके बाद में हट जाइए। फिर आराम से 5 मिनट 10 मिनट रेस्ट करिए, उसके बाद दोबारा करिए। ऐसे आप 5 बार सुबह, 5 बार दोपहर, 5 बार शाम को करो तो आपको काफी हद तक आराम आ जाएगा। रही बात दवा की, अगर आपको दर्द है तो आप कोई भी आयुर्वेदिक तेल ले सकते हैं, महानारायण तेल आता है, पंचगुण तेल आता है, पिंड तेल आता है, उसको कमर पर लगाना। पर ध्यान रहे, कमर में जहां पे आपको पेन है ना, वहां पे उस तेल को रमाना है, वहां मालिश नहीं करनी, रगड़ा नहीं मारना तेल का, वहाँ हल्के हाथ से तेल को रमाना 15 मिनट तक। आपके घर में कोई बच्चा हो या आपकी वाइफ हो, तेल को थोड़ा सा गर्म करें, और वहां पे बेहतर है कि आप एक जो है उड़द के आटे का एक गोल चक्कर बना लें, और जहां पेन है वहां पे उस तेल को भरें, हल्का गर्म रहना चाहिए, जला मत लेना। तो उसको फिर जैसे तेल ठंडा होने लगे तो दूसरा तेल चेंज कर लें किसी चम्मच से, फिर उसको रखें, ऐसा 45 मिनट कंटिन्यू करें आप। दूसरा, आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होता, कब्ज तो नहीं रहती?
1: कब्ज
2: नहीं रहती तो बहुत अच्छी बात है। अगर कब्ज रहती है तो अरंडी का तेल आप ले सकते हैं, ठीक है, आपको रिलीफ हो जाएगा। आप आराम ये करिए आप, और आगे झुकने की कोशिश मत करिए। अगर आपने नीचे कोई सामान गिर जाए उठाना है तो बैठ के उठाइए, आप बैठ के खड़े हुए, झुक के नहीं उठा, झुकना नहीं आगे, ठीक है, आपको आराम आ जाएगा, ये 100% आराम आएगा इससे। आप
0: बहुत धन्यवाद, आपने हमें कॉल किया।
2: हाँ जी,
0: हमारे साथ दोस्तों अगले कॉलर लाइन पर है, देखते हैं उनका क्या सवाल है।
1: हेलो।
0: हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका, सवाल पूछिएगा।
1: मैडम जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार।
0: नमस्कार, नमस्कार चड्डा जी, सवाल पूछे आप प्लीज, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको।
1: डॉक्टर जवाब साहब को भी नमस्कार।
2: नमस्कार जी, नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है।
2: जी सर, बोलिए।
1: अगर किसी पर्सन को ये कंफर्म हो जाए कि उसको सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस है, तो उसको स्क्रीन टाइम बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, या मोबाइल देखना, या लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम करना, या फिर टाइम शॉर्ट कर देना चाहिए?
2: देखो, ऐसा है, ये तो चीज पॉसिबल नहीं है, कोई बिल्कुल कंप्यूटर काम नहीं करेगा, मोबाइल नहीं देखेगा, पर उसकी अपनी पोजीशन बदले। जैसे मोबाइल देख रहा है तो

0: ऊपर उठा के देखे मोबाइल को, गर्दन झुका के ना देखे। अगर कंप्यूटर पे काम कर रहा है तो इसको जो आपका पैड है उसको टेढ़ा ऊंचा उठाए आगे, है ना, जैसे आपने किसी ऑफिसर की टेबल पे देखा होगा उनके लगा होता है, तो उसको ऊंचा उठा के काम करे। पर ये ना कंटिन्यू काम ना करे, जैसे आपने उसे आधा घंटा काम किया उसके 5 मिनट घूम लो उसके बाद फिर कर लो काम, और बीच में जो मैंने एक्सरसाइज बताई थी आपको उसको करिए आप, कोई दिक्कत नो प्रॉब्लम। बाकी मैंने जो एक सिंगल एक्सरसाइज बताई है आपने शायद सुनी होगी, वो सर्वाइकल के लिए बेस्ट है, 99.9% लोग ठीक हो जाते हैं। मैं तो कहता हूँ आप खुद करेंगे ऐसे तो आपको रिलीफ मिलेगा, औरों को कराएंगे तो और भी ठीक हो जाएंगे, एक किस्म से आप सर्वाइकल के डॉक्टर बन जाएंगे विदाउट एनी मेडिसिन। ये हमारी गारंटी है ठीक करने की, हम करते हैं ऑनलाइन भी करते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब ये एक
2: सवाल, डॉक्टर साहब
0: हाँ जी,
2: जय हिंद
0: जय
1: जी, बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब यहाँ पे दो चीजें मन में आ रही है इस समय, एक तो ये कि आपने कहा कि दिन में 5 बार करना, सुबह शाम करना, तो इसमें खाने पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका पेट भरा हुआ कुछ है उससे कोई इसका फर्क नहीं पड़ता,
0: सर्वाइकल में कोई प्रॉब्लम आती
1: है। अच्छा जी, तो कभी भी ये किया जा
0: सकता
1: है, ओके। और ये अगर पेन ठीक हो जाता है तो उसके बाद कंटिन्यू करना होता है, छोड़ दें उसके बाद
0: करते रहो, कभी कभी तो करते ही रहो,
1: तो बॉडी की स्ट्रेचिंग होती रहेगी,
0: क्योंकि एक्चुअल में क्या है मूवमेंट बंद होगी, लोग पहले खेलते थे कूदते सब कुछ, अब सब है नहीं, आदमी उठता है गाड़ी में बैठा है या जैसे भी गया कंप्यूटर बैठ के जाके, या मोबाइल सबके पास है, मोबाइल पर लगा रहता है, एक घर में 4 आदमी 4 मोबाइल हैं, आपस में नहीं बात कर पाते हो। देखिए इंटरटेनमेंट ही बहुत जरूरी है लाइफ में, इंटरटेनमेंट सबसे जरूरी है। मैं आपको बता दूं लोग शादी के बाद में जो घर में रहते हैं हंसना भूल जाते हैं, हंसना बहुत जरूरी है।
1: चलिए हमारे पास अगले जो मैसेजेस आ रहे हैं उनको हम शामिल कर लेते हैं
0: जी।
1: मुकेश जी हैं ये दिल्ली से, इनकी उम्र 35 वर्ष है डॉक्टर साहब, और ये कहते हैं कि गुड आफ्टरनून, मुझे साइटिका का बैक पेन हुआ था लास्ट ईयर, और अब मैं जब बाइक चलाता हूँ और या किसी सॉलिड जगह पे बैठता हूँ तब पेन होता है बैक में, शोल्डर पेन है 2 साल से, और सोने के वक्त कंधे दर्द होते हैं, लेफ्ट या राइट सीधा भी नहीं होता, सो पाता हूँ मैं, मतलब ऐसा ये कहना चाह रहे हैं।
0: देखिए ऐसा जहाँ तक ये आपको लेग में जो पेन जा रहा है तो आपकी जो नस है रीढ़ की हड्डी में जो है दबी हुई है, डिस्क प्रॉब्लम है आपको। कंधे में आपको पेन है तो हो सकता है आपको फ्रोजन शोल्डर की शिकायत हो या सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी हो। सर्वाइकल का मैंने आपको इलाज बता ही दिया जैसे करना है सारा बताया है, और डिस्क वाला भी मैंने बता दिया, अभी एक पेशेंट को बताया था आपने शायद सुना भी होगा। अगर पेन ज्यादा तो आप दवाई ले सकते हो। रही बात आपकी मोटरसाइकिल पर जाने की, क्योंकि मोटरसाइकिल में झटका लगता है, अगर डिस्क वाला प्रॉब्लम है तो आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, आप या तो गाड़ी में जाइए या मेट्रो में जाइए, जैसे जो व्हीकल हो, पर आप इसमें अगर चलेंगे तो झटका लगेगा, जहां भी झटका लगेगा। अगर आपने पैर आपका ऊंचे नीचे चला जाएगा, मान लीजिए गांव में जैसे ढेल होती है ऊंची, अगर आपने वहां झटका लगाया तो एकदम आपको पेन बढ़ जाएगा, इसलिए आपको प्लेन जगह पर चलना है और स्लो चलना है, तेज नहीं चलना, तो ये सावधानी आपको रखनी पड़ेगी तब आप ठीक होंगे।
1: ओके अच्छा, ये भी एक बड़ी बात आपने कही कि एक्सरसाइज करने के टाइम पे हम सोचते हैं ज्यादा तेज चलने से शायद फायदा होगा, तो जब पेन है तब तेज नहीं चलना, आप ये कह रहे हैं। ओके तरुण कुमार हैं छत्तीसगढ़ से, आप लिखते हैं कि सर आपसे पूछ रहे हैं सवाल ये कि सर जब हम एक्सरसाइज करते हैं उस समय गलत एक्सरसाइज हमारी पीठ में उसकी वजह से दर्द हो जाता है, जो पीठ में दर्द होता है एक्सरसाइज करने से, उस दर्द को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। साथ ही इनका एक और सवाल है कि हम ऊंचे ऊंचे तकिए जो है वो सोने के समय ले लेते हैं तो उससे गर्दन में दर्द की शिकायत हो जाती है, तो क्या ये दोनों चीजें एक्सरसाइज करके ठीक की जा सकती हैं, दर्द ठीक किया जा सकता है।
0: देखिए जिस भी एक्सरसाइज से आपको दर्द बढ़ रहा है उस एक्सरसाइज को छोड़ दीजिए, सोने के लिए जो तकिया इस्तेमाल कर रहे हैं तकिया को हटा दीजिए आप, तभी आपका सुधार हो सकता है, तभी आप ठीक रहेंगे। अगर आपने गलत एक्सरसाइज करोगे तो तकलीफ बढ़ेगी, ठीक कहां से हो जाएगी। ठीक वाली बात तो मैंने आपको बताई है, सर्वाइकल की मैंने बता दी है, डिस्क की मैंने बता दी आपको, उसको तरीके से करिए ना, आपको आराम आएगा। अगर गलत पोस्चर होगा और गलत एक्सरसाइज करेंगे तो फिर तो भगवान ही ठीक कर सकता है, भाई इंसान के बस का तो है नहीं।
1: दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं रेडियो डॉक्टर में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, हमारे साथ हैं डॉक्टर बी एस दभास जी और मैं हूं आपकी दोस्त तपस्या। ये सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है सर्वाइकल से रिलेटेड, तो उसका आप समाधान हमारे डॉक्टर साहब से पा सकते हैं। डॉक्टर बी एस अब्बास जी हमारे साथ हैं और मैं हूँ आपकी दोस्त तपस्या, और हमारे साथ एक कॉलर है लाइन पर। देखते हैं कौन है और क्या है उनका सवाल। हेलो
2: हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार, आपका स्वागत है रेडियो डॉक्टर में।
2: जी नमस्कार मैम, मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार करता हूँ। अविनाश महावरा बोल रहा हूँ, गाँव सन्नौट, दिल्ली 40 से।
1: जी
3: नमस्कार जी, नमस्कार, बोलिए
1: जी, सवाल पूछिएगा।
2: साहब मैं ये जानना चाहता हूँ, थोड़ा देर से ट्यून कर पाया हूँ, एक बार एक्सरसाइज बता दीजिए सर्वाइकल की दोबारा से।
3: ठीक है, बता देता हूँ, जरा सुनिए ध्यान से, और भी कुछ लिसनर हो भी जरा देख लें। देखिए आप सीधे खड़े हो जाइए, दोनों हाथ सामने करिए जैसे पीटी में करते हैं, हथेली नीचे की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद दोनों हाथ वहीं से सीधे साइड में लाइए, हथेली नीचे रहें।
2: हाँ जी।
3: उसके बाद दोनों हाथ पीठ के पीछे जाएंगे, बटक्स के ऊपर, और हथेली मिलाइए आप।

0: उसमें लॉक करिए, लॉक कर दिया, सीधे खड़े रहिए, झुकना नहीं है पीछे की तरफ, और दोनों हाथों को पूरा नीचे खींचिए, पूरी ताकत हाथों में डाल दीजिए। अब हाथ ढीले नहीं करने जब तक मैं ना कहूँ। अब गर्दन को पीछे लीजिए, गर्दन चलेगी पीछे। अब 30 तक काउंटिंग करिए, 30 तक मतलब आधी मिनट,
1: ठीक है जी, 30 तक हो जाएगा।
0: 30 तक काउंटिंग हो जाए तो पहले गर्दन सीधी करिए, फिर हाथों को धीरे धीरे ढीला करिए और साइड में लाइए। यहाँ 7 तक काउंटिंग करिए, फिर आगे लाइए सामने की तरफ, यहाँ 7 तक काउंटिंग करिए,
1: ठीक है।
0: उसके बाद हाथ नीचे कर लीजिए और बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए और बैठ जाइए 2 मिनट या 5।

0: 100 परसेंट बोलेंगे हाँ मुझे रिलीफ मिला है, करके देखिए प्लीज, थैंक यू।
1: बहुत शुक्रिया। अब हमारे पास डॉक्टर साहब कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं। रेनू है दिल्ली से, आप लिखती हैं व्हाट आर द एक्सरसाइजेस फॉर फ्रोजन शोल्डर, तो इनके जो कंधे हैं वो फ्रोजन मतलब हो चुके हैं, जकड़ चुके हैं, तो वो उनको उनके लिए पूछने को एक्सरसाइज अगर हो तो आप बताइए प्लीज।
0: हाँ एक्सरसाइज है आपके ना, कंधों की मूवमेंट करिए आप, ये तो ये है, आप दोनों हाथ कंधों पर रखिए और उनको घुमाइए आगे की तरफ घुमाइए, फिर रिवर्ट को वापिस घुमाइए, पहली मूवमेंट तो यही है, फिर दूसरा जो है सामने की तरफ आगे ताली बजाइए, पीछे बैक में पीठ में ताली बजाइए, ठीक है, और हाथों को घुमाइए आगे की तरफ और पीछे की तरफ घुमाइए, एक्सरसाइज करिए आप, एकदम ज्यादा नहीं करनी, थोड़ी थोड़ी करिए, पर कई बार करिए आप, जो फ्रोजन शोल्डर है आपको आराम आ जाएगा। और लगाने के लिए कोई भी हमारा ऑयल लगा सकते हैं, आयुर्वेदिक ऑयल, मैंने बताया नाम, महारान तेल है, पंचकुण तेल है, पिंड तेल है, क्षीरबला तेल है, बहुत सारे तेल, वो लगाए उसको और उसको हल्के हाथ से मसाज करना है उसका, वहां तो हल्का सा प्रेशर डालना है, तो ऐसा आप जो है कम से कम 15-15 मिनट एक एक कंधे पर करना है, ऐसे करिए। ठंडी चीज अपनी सारी अवॉइड कर दीजिए, जो भी खाने वाली चीजें, चावल, दही, लस्सी, मूली, नींबू, फ्रिज का पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, एसी में एसी को अवॉइड करिए, और एसी में जरूरी है तो 28 में चलाइए उसको, ज्यादा ठंडा होगा तो आपका पेन बढ़ेगा। दूसरा जो वायुवर्धक चीजें जैसे मटर है, गोभी, राजमा, छोले, उड़द दाल, बैंगन का थोड़ा अवॉइड करिए, अगर आलू की सब्जी खाते तो आलू को उबालिए, पानी फेंक दीजिए, फिर खाइए, कच्चे आलू सब्जी मत बनाइए, तो ये आप प्रिकॉशन लेंगे आपको ठीक हो जाएगा, ये हमारी गारंटी ठीक करने की, करिए सही आप जरा।
1: यहाँ पर दो चीजें मैं आपसे और पूछती चलूँ, आपने तेल का कई बार जिक्र किया और आपने कहा उसको गर्म करके लगाना चाहिए, तो कोई भी तेल जब हम लगाते हैं तो गर्म करके ही लगाया जाए,
0: उसका एक्शन जल्दी होता है, ज्यादा होता है
1: जी,
0: फास्ट एक्शन हो जाएगा, और ठंडा लगाएंगे तो फिर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसके ऊपर
1: जी। और दूसरा
0: एक और इम्पोर्टेंट बात है, तेल कभी डायरेक्ट गर्म मत करिए, पहले पानी में उबालिए किसी भी पतीले में, उसमें दूसरे एक बर्तन में डालकर तेल रखिए, ऐसे तेल गर्म करना चाहिए, तेल बार बार करने से गर्म करने से उसे कार्सिनोजेनिक हो जाता है, उसे कैंसर होने का खतरा रहता है। अब मैं देख रहा हूँ बहुत से सेंटरों में वो तेल को डायरेक्ट गर्म कर रहे हैं और लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्य इन चीज़ों का। मैंने पंचकर्मा केरल से किया हुआ है तो वहाँ मैंने बड़ा अच्छा सिस्टम देखा केरल में, वो प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, पर मैं यहाँ दिल्ली में देख रहा हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितने भी मैंने पंचकर्मा हॉस्पिटल सेंटर जो खुले हुए सब डायरेक्ट तेल गर्म कर रहे हैं, जो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, फ्यूचर में आपको कोई बीमारी आ सकती है।
1: तो आप ये कह रहे हैं जो सर में हेड मसाज की जाती है वो भी तेल गर्म करते टाइम गर्म पानी में रखा जाए,
0: सिर में हल्का, सिर में ज्यादा गर्म तेल इस्तेमाल नहीं होता, हल्का कोसा तेल लगा सकते हैं
1: जी, तो वो सीधा आंच पे रखा जा सकता है,
0: आंच पे रखना ही नहीं तेल कोई भी,
1: वही हम आपसे कह रहे हैं।
0: हाँ, नहीं रखना आंच पे, तो तेल गर्म करना ही नहीं चाहिए कोई भी
1: जी। डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ है, उनको हम लेते हैं जरा। हेलो,
2: नमस्कार मैम
1: जी। नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, को भी नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: सर मैं ये पूछना चाह रहा था, एक्चुअली मेरा मार्केटिंग का जॉब है और मैं गाड़ी ड्राइव ज्यादा करता हूँ
0: जी,
2: तो अभी लास्ट टाइम लगभग 10 दिन पहले मेरे साथ इतफाक ऐसा हुआ कि मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था और मेरे को काफी ज्यादा चक्कर आ गए थे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था,
0: देखो चक्कर आने के
2: लिए जाना चाह रहा हूँ कि सर्वाइकल की वजह से।
0: देखिए आपका जॉब क्या है, कोई कंप्यूटर पे काम करते हैं, ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं?
2: मेरा कंप्यूटर का नहीं है, मार्केटिंग में इंडस्ट्रीज में जाता हूँ, फैक्ट्री वगैरह में।
1: आप कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम प्लीज बताइएगा और कहाँ से बोल रहे हैं बताइए।
2: मैं मेरठ से बोल रहा हूँ, वीरेंद्र शर्मा मेरा नाम है
1: जी। जी
0: देखिए ऐसा होता है, चक्कर आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर का भी कारण हो सकता है, आपको हीमोग्लोबिन कम होता भी चक्कर आ सकते हैं, और सर्वाइकल उसमें भी चक्कर आ सकते हैं, ये तो आपको करना पड़ेगा कि क्या क्यों चक्कर आ रहे हैं, अपना हीमोग्लोबिन
2: खून। मेरे को फर्स्ट टाइम हुआ ये।
0: नहीं कोई भी चीज होती है फर्स्ट टाइम होता है, बच्चा फर्स्ट टाइम पैदा होता है तो ये सब काम फर्स्ट टाइम होते हैं, कोई बीमारी आए चाहे कुछ भी तो फर्स्ट टाइम होता है सारा, सेकंड टाइम तो बाद की बात होती है। तो मैंने बोल दिया आपको सर्वाइकल के लिए, मैंने बता दिया एक्सरसाइज करिए आप, अगर आपको सर्वाइकल होगा तो रिलीफ हो जाएगा 100%, अगर मान लो कोई और वजह होगी चक्कर आने की तो फिर आपको और जांच करानी पड़ेगी अपनी।
1: तो डॉक्टर साहब कुछ क्या जांच करवानी चाहिए, कुछ इनको सलाह दे पाएंगे आप?
0: हाँ जांच करा सकते हैं आप, भाई पहले तो आप हीमोग्लोबिन चेक, अपना एचबी हीमोग्लोबिन चेक करा लीजिए, अपना ब्लड प्रेशर भी आप चेक कराइए, अपनी आंखों भी आंखें आई साइड भी आप चेक कराइए, ठीक है, ये सारी छोटी मोटी चीजें तो चेक करा लीजिए, फिर आगे अगर ये सब नॉर्मल मिलती है तब आगे के बारे में सोचेंगे
1: जी। बिल्कुल हमारे साथ।
0: और गर्मी अगर आप खाली पेट जा रहे हैं तो उसके वजह से भी माल न्यूट्रन से भी चक्कर आ सकते हैं। अच्छा। खाना भी आपको टाइम से खाना चाहिए जरूरी।
1: ओके अच्छा, खान पान से भी फर्क पड़ता है।
0: मैडम सारे फर्क है, खान पान सारा ही तो है।
1: ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि खाना जो है प्रॉपर तरीके से
0: टाइम से खाना खाना चाहिए।
2: खाना पीना तो मैं समय से लेता हूँ
1: जी। जी
2: मुझे जरा सी एक जानकारी हो, यदि आपके पास समय हो तो दे पाएंगे
1: जी? पूछिएगा
2: जी। एक्चुअली में मैंने ये तो चक्कर आने की समस्या हुई है, कभी आपने आप लोग भी सफर करते होंगे
0: जी,
2: तो जैसे हम लोग स्टेशन पे जाते हैं आपको लगता है बराबर वाली ट्रेन चल रही है।
0: हाँ जी।
2: और जबकि वो खड़ी रहती है।
1: आप सवाल देखिएगा प्लीज जी।
2: ये मेरे को मतलब ट्रैफिक में भी कई बार ऐसा हो जाता है जब जाम में मेरी गाड़ी रुकी हुई होती है।
0: हाँ हाँ, तो ऐसी ऐसी फीलिंग होती है।
2: हाँ हाँ हाँ,

0: बराबर में गाड़ी चल रही है और मेरा कई बार ब्रेक पे पैर चला जाता है कि गाड़ी चल रही है, ट्रैफिक बंद है।
1: तो उसके लिए ना अपना हमारी दवाइयां आती है आयुर्वेद में, जैसे शंख पुष्प भी आता है, ठीक है, अश्वगंधा आता है, अश्वगंधा आता है, लिक्विड भी आता है, पाउडर भी आता है, आप उसको लीजिए। आप उसको खाली पेट शंख पुष्प सिर्फ लीजिए आप, और अश्वगंधा आप दूध के साथ लीजिए, पाउडर है तो, और पीने वाली है तो खाने के बाद पीजिए, चार चम्मच दवाई चार चम्मच पानी में लग लीजिए, आपको रिलीफ हो जाएगा।
2: जी डॉक्टर साहब, ये वीरेंद्र जी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इसके लिए एक बार टेस्ट करवा लीजिए तो शायद आपको स्पष्ट हो पाएगा, ब्लड प्रेशर का जैसे वो कह रहे हैं, हीमोग्लोबिन का भी कह रहे हैं, कुछ चीजें हैं, आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। अगर सर्वाइकल का है तो कुछ एक्सरसाइजेस बताई गई हैं, अगर आप उनको कर पाए तो शायद आपको रिलीफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये केडी त्रिपाठी हैं, 70 वर्ष अपनी आयु बता रहे हैं, रांची से इनका मैसेज आया है। ये पूछ रहे हैं कि आयुर्वेद के अनुसार कौन कौन सी कसरत करने से सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस से बचा सकता है, वो आप कई बार बता चुके हैं, तो हमें लगता है केडी त्रिपाठी जी आपको शायद अब तक इसका समाधान मिल गया होगा। अभी हमारे पास बहुत सारे और मैसेजेस आ रहे हैं, तो पीलीभीत से तिलक जी हैं, लिखते हैं, मेरी दीदी की उम्र 47 वर्ष है, उनके पैरों के खुर्द में बहुत दर्द रहता है और दर्द के कारण वो चल भी नहीं पाती, तो ऐसे में उनको आराम के लिए हम क्या कर सकते हैं?
1: पीठ में दर्द रहता है?
2: नहीं, पैरों में।
1: पैरों में जी, पिंडली में दर्द होता है।
2: हाँ, इन्होंने लिखा यह है कि उनको दर्द रहता है खुर्द में। खुर्द क्या होता है, तो आप मोटे तौर पे वैसे ही बता दीजिए, अगर पाँव में दर्द है तो कैसे रिलीफ मिल सकता है?
1: खुर्द शायद नीचे तलवे को बोलते होंगे।
2: हाँ जी, हो सकता है।
1: और तलवे के लिए जो है, आप अश्वगंधा पाउडर आता है हमारा, उसको एक गिलास दूध में डालिए, एक चम्मच पाउडर, एक गिलास पानी डालिए, मंदी आंच पर पकाइए, उसके जब पानी जल जाए, दूध जाए, उसको दीजिए, बस तो आराम आएगा। और एक तेल का मसाज करिए, पिंड तेल का करिए या पंचकुण तेल का करिए, आराम आएगा आपको।
2: जी, ये डॉक्टर साहब, एक और मैसेज हमारे पास आया है, ये कहते हैं, गुड आफ्टरनून मैम, मेरा इनका जो एक कंधा है वो कहते हैं वो झुका रहता है, कभी लेफ्ट की तरफ कभी राइट की तरफ, डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया तो वो कह रहे हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेढ़ेपन की शिकायत है, तो इसमें कुछ किया जा सकता है के माध्यम से इसको ठीक किया जा सकता है, कोई सोल्यूशन?
1: देखिए, कभी आपका लेफ्ट का झुक रहा है, कभी राइट का झुक रहा है, इसलिए आपने, कितनी उम्र है आपकी?
2: इसमें उम्र इनकी नहीं लिखी है,
1: मैसेज है। तो इसके लिए जो पहले दंड लगाते थे, दंड लगाते थे, आप दंड लगाइए, आपके कंधे दोनों पे बराबर प्रेशर पड़ेगा और आप ठीक हो जाएंगे जी, कर सकते हैं आप आराम से।
2: अच्छा, ये ललित भाटिया जी का एक सवाल डॉक्टर साहब हमारे पास आया है, अहमदाबाद से, 65 साल अपनी उम्र बता रहे हैं और कह रहे हैं, डॉक्टर साहब मैडम आपको धन्यवाद, सही जवाब हमें मिल रहे हैं, इनको हर्निया और बवासीर की प्रॉब्लम है, तो इन्हें क्या करना चाहिए अगर सर्वाइकल है तो?
1: देखिए, हर्निया के लिए तो ये है कि भाई हर्निया क्यों होता है, हर्निया एक तो अम्बिलिकल हर्निया है और दूसरा इंग्वाइनल हर्निया जो कॉमन होते हैं, तो अम्बिलिकल हर्निया का तो हम वैसे इलाज कर देते हैं आयुर्वेद तरीके से, ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, बच्चों में कॉमनली होता है, कई बार बड़ों में होता है, पर वो लोग सर्जरी के लिए पहुंच जाते हैं तो सर्जरी हो जाती है उनकी। दूसरा जो है इंग्वाइनल हर्निया है, उसके लिए आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, आप जोर लगा रहे होंगे तो इंग्वाइनल हर्निया बढ़ेगा, खांसी होगी तो प्रेशर पड़ेगा तो बढ़ेगा, और आपको जो है वजन उठाओगे तो भी बढ़ेगा, इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए, कब्ज मत होने दो कभी भी, खांसी हो तो फौरन दवाई लो, और जहां पे आप प्रेशर आ रहा है वहां पे हाथ रखो। आपकी जो आजकल जो मॉडर्न टॉयलेट आई हुई है इंग्लिश टॉयलेट, ये हर्निया पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें आदमी सीधा बैठता है, प्रेशर डालता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो पोटी तो उसको आती नहीं है, वो प्रेशर साइड में जाता है, तो वहां जहां भी झिल्ली कमजोर होती है हाथ की, वहां से हाथ बाहर आती है, हर्निया बन जाता है। इसलिए देसी सीट टॉयलेट सीट का इस्तेमाल करिए, हर्निया नहीं होगा। कब्ज में तो होने दीजिए, कब्ज है तो अब आयुर्वेद में बहुत दवाइयां आती हैं। वैसे तो कब्ज का सबसे अच्छा तरीका है कि सुबह उठकर आप 1 से 1.5 लीटर जल हल्का गर्म करके बैठ पीजिए, आधा घंटे पेट साफ हो जाएगा आपका, कब्ज रहेगी नहीं। हम तो दवाइयां देने की पक्ष में भी नहीं है, आप ऐसे पानी से ही पेट साफ हो सकता है, सबसे अच्छा तरीका है ये, और ये आप ऐसा करिए तो आपको कब्ज नहीं होगा। हर्निया के लिए मैंने आपको बता दिया, अगर हर्निया की स्टेज ज्यादा आ गई तो हो सकता है फिर ऑपरेशन करना पड़े, पर अगर स्टार्टिंग होता है तो हमारे पास आए, हम ठीक कर देते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं
2: जी। डॉक्टर साहब, बहुत से सवाल हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन आपने पानी की जो बात की, बहुत बार ये कहा जाता है कि बहुत लोग, हर किसी का बॉडी अपना टाइप अलग होता है, तो उनको ज्यादा पानी का इंटेक नहीं लेना चाहिए या पानी किसी को सूट नहीं करता, तो ये सबके लिए नियम एक जैसा है, 1.5 लीटर पानी, 1 लीटर
1: पानी पीने में अगर किसी को दिक्कत है तो पानी में अगर किसी को नींबू सूट करता है तो नींबू डाल सकता है, अगर किसी को पानी फीका पानी पीने मुश्किल है तो थोड़ा सा उसमें दूध डाल सकता है। पानी पीने आप एकदम नहीं पी सकते, तो एक एक मग्घा करके आधा आधा लीटर दिन में तीन उस मॉर्निंग में 3 बार पी लीजिए, 15-15 मिनट का गैप देके पी लीजिए, 1.5 लीटर पानी आपके पेट में जाएगा। तो पानी का जो प्रेशर, जैसे आप फ्लैश चलाते हैं तो मल कैसे जाता है, फ्लैश चलाने से मल अंदर जाता है ना आगे, ऐसे ही आप ऊपर से पानी डालेंगे तो उसका प्रेशर आएगा और पोटी को नीचे सरका देगा, पेट साफ हो जाएगा, सबसे आसान तरीका है
2: जी। डॉक्टर साहब, ये कामत है दिल्ली से, उम्र अपनी 30 साल बता रहे हैं, ये लिखते हैं, दोनों हाथों के जो कंधों का जो है इनका दर्द बना रहता है दिन भर, और कमर में लोअर बैक में भी पेन रहता है पिछले 1.5 साल से, आयुर्वेद में कोई तेल या कोई योग या उपचार हो तो कृपया बताएं।
1: देखिए, तेल तो मैंने बताया, कई बार बता चुका मैं, बहुत सारे तेल आयुर्वेद में आप उसको लगा सकते हैं, थोड़ा हल्की सी

0: ही करें, और कमर में जो लोअर बैक में पेन है वो अगर आगे झुकने से बढ़ रहा है पेन, तो बताइए अब मैसेज है क्या? तो आगे झुकने से बढ़ रहा है तो इसका मतलब डिस्क की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, और आगे झुकने से नहीं, बाकी मैंने एक्सरसाइज बताई अभी ऑनलाइन बताया, मैंने समझाया, आप वो एक्सरसाइज करिए, आपको आराम आ जाएगा। और कब्ज मत होने दीजिए, अगर कब्ज है तो उसके लिए जरूर आपको दवाई लेनी पड़ेगी, ताकि कब्ज दूर हो जाएगी तो आपको पेन में रिलीफ होगा, अगर कब्ज होगी तो पेन बढ़ेगा।
1: जी डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी रोचक जानकारी आप दे रहे हैं, ऐसा हमारे लिसनर्स हमें लिखकर भेज रहे हैं। राकेश जी हैं भिंड से, और ये कहते हैं, गुड आफ्टरनून सर एंड मैम, मेरे घुटने में पेन और ऐठन होती है जब बादल होते हैं या सर्दियां होती हैं। इनकी उम्र है 33 वर्ष, तो ऐठन के लिए
0: 33 इयर्स।
1: हाँ
0: देखिए ऐसा होता है कि ये हमारा जो खाना पीना है, जैसे हम खड़े होकर पानी पी रहे हैं, खड़े खड़े कैंपा पी रहे हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा जो गरीस है घुटने का वो कम होता है, आम भाषा की बात बता रहा हूं मैं, और खड़े होकर आप दूध पियेंगे तो गरीस बनेगा। तो ये घुटने की हम एक एक्सरसाइज ही बताते हैं, वो एक्सरसाइज करेंगे आप तो आपका घुटना ठीक हो जाएगा, थोड़ा ठंडी चीजें अवॉइड करिए खाना पीना आप, तो ये थोड़ा सा खाने पीने का सिस्टम सुधारिए अपना और एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज भी मैं, अगर आप सुन रहे होते तो मैं आपको समझा देता अभी, ऐसे तो क्या फायदा, ऐसे ऐसे नहीं समझ पाएंगे तो कुछ फायदा नहीं कहने का, तो एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाता है। बाकी बेस्ट तरीका यही है कि आप खाना पीना सुधारिए अपना, ठंडी चीज अवॉइड करिए और एक्सरसाइज करिए।
1: जी, तब तक एक गीत सुनते हैं।
2: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए,
3: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
2: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
3: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें health@delhi@gmail.com पर।

0: अगला सवाल लेते हैं। दोस्तों आप सुन रहे हैं इस समय रेडियो डॉक्टर, आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डाइटिस के बारे में, किसकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। डॉक्टर बी एस जबास जी आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं और बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ चुके हैं, समय थोड़ा कम है। डॉक्टर साहब, ये साहिल जी है मेरठ से, कहते हैं मेरे पैरों के तलवों में दर्द रहता है, क्या करूं, उम्र इनकी 27 साल है।
1: तलवों में दर्द का

0: अभी बताया था आपको कि एक तो तेल की मालिश करें आप, दूसरा अगर मान लीजिए आपको तलवा ऐसा भारी भारी लग रहा है आपको, तो अश्वगंधा चूर्ण एक चम्मच और एक गिलास दूध और एक गिलास पानी उसको मंदी आंच पे पकाएं, और उसके बाद जब दूध दूध रह जाए उसको आप पिए, और बस इससे आराम आ जाएगा आपको
1: जी। अगले हमारे जो मैसेज जिन्होंने भेजा है वो है राहुल दिल्ली से। आप कहते हैं और सर मेरा नाम राहुल है और मेरे पेट में हमेशा, इनका पेट जो है वो टाइट रहता है, कुछ भी खाता हूं तो एकदम पेट टाइट हो जाता है पत्थर की तरह, और मैं अल्कोहलिक हूं, ये इन्होंने लिख के भेजा है, तो आप कुछ इसके बारे में।
0: देखिए अब अल्कोहलिक है तो हो सकता है आपका फैटी लीवर भी हो, 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड, तो पहले तो आप अल्कोहल छोड़िए, अपना एक बार अल्ट्रासाउंड कराइए, पता लगेगा वाकई में आपका लीवर फैटी है तो लीवर फैटी की दवाई लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और हल्का खाना खाइए, आमतौर पर घिया तोरी टिंडा सीताफल ये सब्जियां खाइए, हैवी खाना बंद कर दीजिए, राजमा है छोले है आपके पनीर है ये सब बंद करिए आप।
1: अच्छा पनीर से भी प्रॉब्लम होती
0: है? पनीर तो आजकल सारा ही मिलावटी आ रहा है, तो जहरी मिल रहा है, क्या कर सकते हैं
1: जी। अगले ये अरविंद जी हैं यमकेश्वर से, पौड़ी गढ़वाल से, उत्तराखंड से इन्होंने भेजा है संदेश, और ये कहते हैं गुड आफ्टरनून मैम, प्लीज बताएं कि डॉक्टर साहब से पूछें कि कौन सा वेट गेनर जो है वो लेना चाहिए आयुर्वेदा के लिहाज से, जिससे वेट गेन कर सके।
0: अगर वेट बढ़ाना चाहते तो अश्वगंधा है हमारे पास, सतावर है, ये वेट बढ़ाने वाली चीजें हैं। बाकी खाने में आप दूध लीजिए, फुल क्रीम। अगर जल्दी वेट बढ़ाना है तो उड़द की दाल की खीर बना खाइए आप, उसमें नमक नहीं डालना तो आपका वेट बढ़ेगा। तो ये खाने पीने का थोड़ा डाइट अच्छी करोगे तो वेट बढ़ेगा
1: जी। डॉक्टर साहब अबू उबैदा हैं उत्तर प्रदेश से, आप कहते हैं कि इनको सर्वाइकल है, गर्दन और हाथ में दर्द रहता है, हाथ में कभी कभी झुंझुनाहट भी रहती है, उम्र इनकी 45 साल है, क्या करें?
0: देखिए हमने अभी एक्सरसाइज बताई आप सर्वाइकल के, उसको करिए, आपका झुंझुनाहट भी खत्म हो जाएगा, आप करके देखिए सही, और जो तरीका उसे अपनाइए आप ठीक हो जाएंगे
1: जी। अगले नेहा है मुंबई से, आपने पहले भी सवाल किया और आपको धन्यवाद कह रही हैं, आपने जिनको एक्सरसाइज बताई है उसके लिए, और साथ ही कह रही हैं कि
0: आपने एक्सरसाइज करी क्या?
1: हाँ, उसी के लिए शुक्रिया कह रही हैं आपको ये, और लिख रही हैं कि इनकी मदर जो है 79 इयर्स की हैं, उनको नी ज्वाइंट पेन रहता है, तो प्लीज उनके लिए कोई ट्रीटमेंट बताइए आयुर्वेदा में क्या हो सकता है।
0: नी ज्वाइंट्स के लिए पहली बात तो ये है कि भाई अब इतनी उम्र है उनकी, तो भी खड़े होकर दूध पिए और बैठ के पानी पीना है, मतलब दूध के अलावा जो भी खाना पीना है बैठ के खाना है, ठंडी चीजें उनको अवॉइड करनी है, और थोड़ा सा उनको घुटने की मूवमेंट करनी है, एक्सरसाइज करनी है। अब एक्सरसाइज आप समझ सकती हैं तो एक घुटना छाती से लगाइए, टांग के बीच में से हाथ निकाल के उसको वहीं रोकिए और आगे लेग को ऊपर उठाइए जितनी उठती है और फिर नीचे ले आइए। ये एक्सरसाइज धीरे धीरे करें, झटके से नहीं करनी, ऐसा आप हर 2 घंटे बाद में कर सकते हैं 10-10 बार, या अगर हेल्थ थोड़ा सा इंप्रूव कर ठीक है तो आप 35-35 बार दिन में 3 बार करिए। पर अगर आपको कमर में दर्द है तो ये एक्सरसाइज लेट के करनी है, अगर कमर में दर्द नहीं तो बैठ के कर सकते हो, आपको घुटने में आराम आएगा, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि घुटना जो है वेट बीरिंग ज्वाइंट है। दूसरा आप जो है अभी आपके कैल्शियम ले सकते हैं, अगर मोटी नहीं है ज्यादा, वजन ज्यादा नहीं थे उनको अश्वगंधा दीजिए साथ में, तो ये आप ले सकते हैं, रिलीफ होगा हड्डियां मजबूती के लिए, लाक्षादी गूगल आता है वो ले सकते हैं, पेन के लिए हमारे पास जो है त्रिरोदशांग गूगल है और कैशोर गूगल है और बहुत सारी दवाइयां, और आप ले सकते हैं कोई भी।
1: डॉक्टर साहब सुधीर सिंह जी हैं कुतुबगढ़ से, कहते हैं कि मैम बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं, उनको जल्दी जल्दी बुलाया कीजिए, ये इन्होंने लिख के भेजा है। एक चीज हम और ले लेते हैं लास्ट में, ये जो उनकी क्वेरी है, कहते हैं मैम मेरा एक सवाल है, मेरी मदर की, इनकी मदर जो है उनकी एज 45 बता रहे हैं, उन्हें लोअर बैक में बहुत पेन होता है, उनकी लेफ्ट लेग में भी पेन रहता है, क्या करें?
0: देखिए मुझे लगता है अगर आगे झुकने से उनका पेन बढ़ रहा है तो 99% डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये तो आप बताएंगे आप झुकने से बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। अगर मान लो झुकने से बढ़ रहा है तो आगे नहीं झुकना, पहली बात तो आगे झुकना ही नहीं है। दूसरा जो सर्पासन होता है, सर्पासन वो ऐसे कर सकती हैं, उससे उनको रिलीफ हो सकता है, तो ये तो एक, या तो आप जांच कराइए उनकी, कंफर्म हो जाएगी भाई डिस्क की प्रॉब्लम है या वैसे। बाकी तेल है आयुर्वेद का जो तेल, ये ध्यान रखिए जहां पेन है वहां पर प्रेशर डाल के मालिश नहीं करनी, हल्के हाथ से तेल को रमाना है, कभी भी रीढ़ की हड्डी की मालिश नहीं करते हैं, जो भी ज्वाइंट्स है उनके प्रेशर डाल के मालिश नहीं करनी चाहिए, लोग वहां प्रेशर डालते हैं और प्रॉब्लम बढ़ जाती है।
1: ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने बताई है, जो हर आमो खास को, मुझे लगता है खासो आम को जो है ये मदद करेगी। तो डॉक्टर साहब इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दोस्तों हमारे साथ डॉक्टर बी एस डबास इस प्रोग्राम में रहे, जिन्होंने जो कंसल्टेंट है आयुर्वेदा की CGHS न्यू दिल्ली से, आपने हमें बताया आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डाइटिस के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको अपने सवालों के जवाब मिले होंगे। तो इसी के साथ मैं तपस्या रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम में आपसे लेती हूं इजाजत, इस वादे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। आप सुनते रहिए FM रेनबो इंडिया, नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: जी ना वे वे कड़ा ला मैं कोई और रंगी इंटेरियर ला ना।
1: नहीं सर वो हिस्सा को छोड़ना।
0: अच्छा जी ऐसा करो मोबाइल फोन को लो ते सोशल मीडिया ते जाओ ते कितना हसीन चेहरा सर्च करो। कितना हसीन चेहरा देखो मैं थाना दादा शरण जी कितना हसीन चेहरे तो बहुत इस दुनिया जो तुसी कोई होर चेहरा दसो बोल दे नहीं। हेलो चंगा जी कोई गल नहीं। वेल वेल देखो कितने हसीन चेहरे का मतलब उन्होंने ये सीगा कि जिहड़ा मेरा चेहरा ना बड़ा हसीन है कि वह तो चलो मैं देख ही लोगे पर जिहड़ा गाने की मतलब गल करिए ना तो कितना हसीन चेहरा कहिंदे ना पर गल तो जी शादी की चल रही आप उस हिसाब से गल कर गल गाने लाओगे ना तो इसलिए कोई होर गाना लाओगे।

0: वेल दोस्तों, मैं थोड़ा जी अपना आरजी दोस्त रमनीत, सुन रहे हो प्रोग्राम हेलो जलंधर विद मेरे सौरा साहब कब्बर जी। हेलो जी, एक पहले नवें साडे सरोते जुड़े हुए ने, पहले आप गलबात करके ते इन्हें गलबात बनाइए। हेलो जी।
1: हेलो,
0: सत श्रीकाल जी। की नाम सर तुहाडा?
1: मनोज जी, दानिशमंदा तू जी।
0: अच्छा जी, मनोज जी। हेलो मनोज जी, मैं कहा जी मैं एक सिचुएशन च फस गया जी।
1: किदा?
0: सिचुएशन ये है जी, मेरे सौरा साहब मान नहीं दे व्याह तो जी।
1: क्यों नहीं मान रहे, की गल है?
0: पता नहीं, यो कहंदे मैनु तेरे ते विश्वास नहीं, तू चंगा मुंडा नहीं है।
1: क्यों चंगे मुंडे हो? इतनी बढ़िया नौकरी, इतना बढ़िया काम कार था, तो फिर भी चंगे नहीं?
0: और की, आ गल करो इन्हां नाल जी, मैनु नहीं पता है।
2: हेलो,
1: कराओ गल।
2: हेलो
1: हेलो,
2: हाँ जी,
1: सत
2: श्रीकाल जी। कौन बोलदा?
1: की गल है? की
2: गल तुसी बोलो जी, गल करनी है। तुसी विचोले बन के आए हो?
1: हाँ जी, हाँ जी।

0: हाँ जी दान जी दोस्तों, तो इस सुन रहे हो प्रोग्राम हेलो जिलंदर विद आरजी दोस्त रमनीश विद मेरे सौरा साहब गब्बर जी बोलिया। देखो सौरा साहब, मैं गब्बर नहीं बोलिया क्योंकि ना इज्जत देनी चाहिए सारे उन्होंने, बहुत बड़ी गल है।
1: चपेट ना खाली ओए।
0: चपेट वाली तो कोई गल नहीं हैगी।
1: तू बोलदा किदा ओए, मैं कुसन मारू तेरे ओए।
0: सौरा साहब ठीक है, मान लिया तुम्हें ब्याह नहीं कराना, पर धर्मेंद्र जी की पंजाबी कापी ना बनो। वेल दोस्तों, सौरा साहब मैं तुहानू ना एक बंदा ऐड करांदा जी, तेरे विचोले बड़े सोहने आ जी। हैलो।
2: हैलो सर, सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी, की नाम सर तुहाडा?
2: जगसीर सिंह गिल, पिंड जगतपुर जट्टा सराह तो बोल रहा सर।
0: अच्छा जी, सौरा साहब जगजीत सिंह जी है, असि ना कट्ठे ना पठे बाई दे, क्यों जगजीत सिंह जी?
2: हाँ जी
0: हाँ जी, बड़े नोन मान है जी। किन्ने साल दे तुसी जगजीत जी? मैं 16 साल दे। जगसीर जी जानते नहीं?
2: हाँ जी, 8 साल दे सी, मैं 1 साल दा।

0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी दोस्तों, तुम सुन रहे हो प्रोग्राम हैलो जलंधर विद आरजे रमनीश। जिवें कि दोस्तों तुसी हुणी थोड़ी देर पहले सुनिया कि मेरे जिहड़े सहुरा साहब ने वह मन चुके ने, तो बहुत बहुत वधाई वाली गल हैगी है, पर फिर भी इन्हों ना शक यह है कि मैं एक ना हले भी मैं इन्होंने डाउट है कि एक कॉलर अगर मैं दस देना कि मुंडा बड़ा चंगा तो मैं मान जूंगा, इसलिए मैं कॉलर नू ले आया जी। हैलो
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार सर, की हाल है जी?
1: नमस्कार जी रमनीत जी।
0: हाए पहला की नाम लै लगे सी मेरा, ये दसो पहला।
1: नहीं नहीं मैं नाम तो ही लै लगा सी मैं।

हाँ जी, हाँ जी दोस्तों, तुम सुन रहे सी एफ एम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा है रेनबो चैनल है। ते हुन तुसी युवा साथी जिहड़े हुन युवा साथी अपना प्रोग्राम सुनणगे युवाणी।

0: तो झोना इन्ना ज़्यादा जिहड़ा राइस दी खेती है इन्नी ज़्यादा हुंदी है, हर साल हुंदी है, उहदे नाल पंजाब दे ग्राउंड वाटर ते इन्ना प्रेशर पैंदा है कि जे असीं एक घड़ा मन्नीए ते घड़े तों असीं ज़्यादा पानी कढ़ीए ते घट पाईए, हौली हौली करके उह घड़ा जिहड़ा सीमित हुंदा है, घटदा जाएगा, खत्म हो जाएगा।
1: ठीक है।
0: पंजाब दी जिहड़ी ग्राउंड वाटर दी धरती हेठले पानी दी खपत है, उह 168% है।
1: जी
0: मतलब जे घड़ा 100 100 दे आंकड़े दे नाल भरदा है, तो 168 दे आंकड़े नाल असीं उहनूं कढ रहे हां,
1: जी
0: इन्नी ज़्यादा खौफनाक गल हैगी है। जदों धरती हेठला पानी घटदा रहेगा, उन्नी ही डिजर्टिफिकेशन जिहड़ी है
1: हुंदी
0: वो
1: है
0: वध हो जाती है।
1: बिल्कुल। मैं ये भी सुनी है कि जिहड़ी यूनाइटेड नेशंस है उहदे मुताबिक जिहड़ी खराब जमीन है हर साल दा करीब 880 बिलियन डॉलर दा नुकसान हो जांदा है। मतलब सोके करण नालों लोग घर छड रहे ने और भुख वध रही है। क्लाइमेट चेंज बहुत वड्डा रीजन है इस चीज़ दा, ते उपरों जिहड़े पेड़ां दी कटाई हो रही है वो भी बहुत वड्डा रीजन है रेंजलैंड्स दा।
0: बिल्कुल, खेती जदों वधदी है उहदे नाल जिहड़ी कुदरती खेती है, हुण जे असीं दक्षणी पंजाब जां पंजाब दे जिहड़े जिहड़ियां पहलां ट्रेडिशनल क्रॉप्स हुंदियां सी, ज्वार हुंदा सी, बाजरा हुंदा सी, हुण उत्थों असीं वीट ते राइस ते कल्टीवेशन ते आए हां, उहदे
1: बिल्कुल
0: नाल जिहड़ा है धरती ते प्रेशर पैंदा है। फिर
1: बिल्कुल
0: रुख जिहड़े ने उह जमीन दे विच पानी दी नमी नूं बरकरार रखदे ने, ते
1: जी
0: जमीन दे विच पानी नूं हौली हौली सिमन विच जाण दिंदे ने, जिहड़ी उह इक ग्राउंड वाटर है उह इक इंप्रूव करके रखदे ने।
1: जी
0: जदों रुख घट गए, हुण पंजाब 'च इंडिया 'च सब तो ज़्यादा रुखां हेठ रकबा जिहड़ा, सब तो घट सॉरी,
1: जी
0: वो पंजाब 'च है। ते फिर अपने आप जिहड़ा है पंजाब 'च डिजर्टिफिकेशन वधेगी, इस लई ऐसे दिन जिहड़े है सानूं समझण दी लोड़ है कि इस 'च
1: जी
0: असीं की कर सकदे हाँ। जिहड़े पंजाब दे देसी रुख ने, जंड
1: जी
0: करीर, वो रुखां नूं लगाया जावे,
1: जी
0: फिर उहनां नूं वध तो वध, क्योंकि रुख नूं वड्डे होण नूं भी कई दहाके लग जांदे ने,
1: काफ़ी टाइम
0: इस
1: लगता है
0: करके पुराने रुखां नूं बचाउणा भी उन्ना ही जरूरी हो जांदा है।
1: बिल्कुल। ते डिजर्टिफिकेशन नूं कॉम्बैट करन वास्ते ही सब तो वड्डी गल तो यही है कि रुख ज़्यादा तो ज़्यादा लगवाने चाहिए है हर किसी बंदे नूं। डिजर्टिफिकेशन कॉम्बैट करन वास्ते अब भाग देना पएगा, अपना पार्ट लेना पएगा, ते बहुत कुछ करना
0: बिल्कुल,
1: पएगा।
0: काफ़ी कुछ असीं अपने लेवल ते देखो पानी दी बचत कर सकदे हां जिन्नी ज़्यादा
1: बिल्कुल
0: हो सके। ए ना सोचा जावे कि पानी जिहड़ा है वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, वो एक
1: अनलिमिटेड
0: सीमित स्रोत है, उसनों
1: जी
0: जिन्ना बचाइए। फिर जे असीं कोशिश करिए कि हर जगह ते कंक्रीट करन नालों कितें जमीन होवे कि
1: जी
0: धरती दे विच पानी जदों बारिश होवे ते धरती च पानी जाण दा मौका भी दईए।
1: बिल्कुल उपजाऊ होएगी जमीन।
0: बिल्कुल, इसे तरह हौली हौली असीं जिहड़े अपने एक कुछ कोशिशां करदे रहिए ते काफ़ी कुछ कर सकदे हां।

0: हाँ जी बिल्कुल।
1: ते अभिजीत, म्यूजिक दा एक मतलब अगर तुहानू मैं पूछना चाहवां कि म्यूजिक दा मतलब की है तुहाडी लाइफ दे विच, तुहाडे लई म्यूजिक की है, तुसीं की दसना चाहोगे इस बारे?
0: म्यूजिक मेरे लिए बिल्कुल उस तरह है जिदा एक नॉर्मल इंसान लिए साह लेना होंदा है, क्योंकि
1: जी
0: साह लेना साडे लिए सब तो ज़्यादा जरूरी है, लेकिन उस बारे आप उन्ना ज़्यादा सोचते नहीं क्योंकि उदे तो ही आप जीवित हाँ। बिल्कुल उस तरह म्यूजिक है मेरे लिए, म्यूजिक सुनता वा मैनू इदा लगता मैं बिल्कुल नॉर्मल जिंदा वाँ, लेकिन जो मैं म्यूजिक तो दूर होना वा उदो मैं इदा लगता कि आई एम नॉट देयर एनी मोर।
1: क्या बात है। तो मैनू ये दसो कि मतलब कि तुसी किन्ने क जॉनर्स दे विच हुण तक जिहड़ा गा लैंदे हो?
0: हुण तक दी मेरी अपनी ट्रेनिंग नू कंसिडर करते हुए काफ़ी जॉनर्स मैं कैप्चर कर चुका वा, इंक्लूडिंग इंडियन क्लासिकल, इंक्लूडिंग गज़ल, इंक्लूडिंग भजनस, बाकी लाइट फिल्मी संगीत हो गया, और कुछ एक फोक और सूफी जॉनर्स नू भी मैं टच कर चुका वा।
1: जी, तो जिवें हुणे तुसी अभिजीत दस्या सानू कि तुसी इन्ने जॉनर्स दे विच गा लैंदे हो तो उन्हां नू बखूबी निभा लैंदे हो, तो साडे जिहड़े लिसनर्स ने ना वो बड़ी बेसब्री नाल इंतजार कर रहे होणगे क्योंकि उन्होंने तुहाडे कोलों प्यारे प्यारे गीत सुनने ने। तो फिर देरी किस गल दी, आओ सुन लैंदे हां एक प्यारा जिहा गीत।

लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ।

0: क्या बात है, बहुत सोहना, इन्नी प्यारी आवाज़ है तुहाडी। जदों तुसीं गा रहे सीगे ना अभिजीत, तुसीं बहुत अच्छा हरकता लगा रहे सी, ते इन्हां हरकतां दे पिछे ना पक्की गल है कि रियाज जिहड़ा ना वो बहुत ज़्यादा होएगा। ते सानू ये दसो कि रियाज नू किन्ना क टाइम दिता तुसीं अपनी इस जर्नी दे दौरान?
1: रियाज़ नू लै के एक बहुत ही अजीब जी चीज़ है जो मैं अपने बारे हमेशा ही कहना वा कि मैनू एक्चुअली हजे तक पता ही नहीं है रियाज़ करना कहिंदे किनू है। मैं हुण तक जिन्नी भी प्रैक्टिस की है सिर्फ एक बेसिक प्रिंसिपल नू की है, जिवें दा मैं सुन रहा उवें दा ही मैं गाना है। सो उस चीज़ नू देखिए तो जिन्ने भी सालों तो मैं हुण तक गाँदा आ रहा वा वह सारे ही मेरे प्रैक्टिस दे ईयरस काउंट होणगे, स्टार्टिंग फ्रॉम माई अर्ली चाइल्डहुड टिल नाओ, तकरीबन 12-15 साल तो उत्ते हो चुके ने।
0: जी, ते कदे लाइव शोज़ वगैरह भी कीते ने तुसी?
1: जी बिल्कुल, हर आर्टिस्ट दी जर्नी दे विच बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हुंदा है कि अपने आप नूं परफॉर्म करके ये चेक करदे रहना कि अपना खुद किन्ने पानी च। सो मैं लाइव शोज़ भी कीते ने, जलंधर शहर का मैं रहने वाला हाँ तो मैं जलंधर दे विच बहुत सारे क्लब्स और प्राइवेट ईवेंट्स वगैरह दे विच परफॉर्म किया, बैंड दे नाल भी किया है, सोलो भी किया है, हर तरह के लाइव शोज़ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ।
0: बहुत सोहना, तो जिवें कि तुसी हुणे दस्सिया तुसी है ना स्टेज प्रोग्राम्स कीते ने, कदी स्टेज फेयर का सामना किया होवे या कदी नर्वस होए होवे, इदां दे कदी होया?
1: एक्चुअली स्टेज फेयर दूर करन दा सिलसिला मेरा स्कूल टाइम तो ही शुरू हो गया सी, मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट करके, क्योंकि जिस स्कूल दे विच मैं पढ़िया वा मेरे फादर उस स्कूल दे विच टीचर रहे ने, ते स्कूल दे विच जदों भी मौका मिलिया स्टेज ते जाण दा उदों मेरे फादर ने मैनूं पूरा सपोर्ट किया, जिस करके स्टेज ते चढ़न दा और ऑडियंस दे सामने गाण दा डर मेरा स्कूल टाइम तो ही घटना शुरू हो गया सी।
0: ते जिवें कि तुसीं इन्ने शोज़ दे विच गए हो है ना, इन्ने अच्छे अच्छे रियलिटी शोज़ दे विच तुसीं पार्टिसिपेट किया ते विनर तक रहे हो, सब तो वड्डी गल इह है, ते किवें दा एक्सपीरियंस सीगा उस टाइम?
1: जिस शो दे विच मैं जित्तिया वा उस शो दे मैं दो सीजनस परफॉर्म किए ने, सीजन 10 जिदे अंदर मैं फाइनलिस्ट रहा और सीजन 11 जिन्हों मैं फाइनली जित लिया। सो सीजन 10 दी मेरी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम सी इन एनी काइंड ऑफ रियलिटी शो। सीजन 11 उदा ही रेप्लीकाट सी, उदा ही सीक्वल सी, सो इस करके उदे अंदर मैनू इन्नियां ज़्यादा दिक्कतां नहीं सामने आईया, पर सीजन 10 दे विच मेरा एक्सपीरियंस बहुत इंटरेस्टिंग रहा।
0: जी, सो अभिजीत तुसी बहुत कुछ सीखा है ना सीजन 10 दे विच, ते तुहाडे लई सब तो अच्छा एक्सपीरियंस जिवें कि तुसी दस्सिया कि ओ सीगा, राइट? ते इह दस्सो कि रियलिटी शोज़ दे विच जिदा असीं नॉर्मली मतलब टीवी ते जदों देखदे आ ना, ते सानूं इह देखण नूं मिलदा कि इक ऑडिशन राउंड हुंदा एंड उस तों बाद नैक्सट राउंड इदां मतलब कि कंटीन्यू चलते रहते हैं। एक्चुअल जो तुसी किन्ने क राउंड जड़े सिगे फॉर ऑडिशन क्लियर किए?
1: जिन्हों भी लोगों इच्छा है किसी भी रियलिटी शो च पार्टिसिपेट करने लिए, उन्होंने लिए बहुत ही नाइस पीस ऑफ इनफॉर्मेशन है कि ऑडिशन जड़ा सानू टीवी ते देखता है उस टेलीकास्ट ऑडिशन के पिछे बहुत सारे छोटे छोटे राउंड्स है जिन्हों की फिल्टरेशन के पास होकर आप एक्चुअली टीवी स्क्रीन तक पहुँच पाते हैं। जे मैं अपने रियलिटी शो जिस मैं पार्टिसिपेट किया उसकी गल करा तो सब तो पहला साडा एक प्री स्क्रीनिंग राउंड होया सी जिदे अंदर एक्चुअल च जड़े उस रियलिटी शो दे जजेस है उन्हां नाल साडी मुलाकात नहीं होंदी, लेकिन उस शो दे बैक एंड ते काम

0: वाह, क्या ही कमाल दी आवाज़ है अभिजीत भंडारी जी दी। बहुत बहुत उन्हां नूं शुभकामनावां युवाणी दे परिवार वालों। सानूं ही सुन के बड़ा अच्छा लग्गा ते मैनूं उम्मीद है कि साडे श्रोतिया ने भी उन्हां दी इंटरव्यू उन्हां दे नाल गल्लां करके बड़ा अच्छा लग्गा होएगा। है जब्स
1: बिल्कुल, सानू उम्मीद है कि साढ़े श्रोतियां नू बहुत चीज़ां पता चलियां होणगियां सिंगिंग बारे ते अभिजीत दी जिंदगी दे बारे।
0: बिल्कुल। ते एक छोटी जी म्यूजिकल ब्रेक लैने हाँ, उस तो पहला कि असी अगले सेगमेंट वाल वधीए।

0: तो दोस्तों वधदे हैं असी अगले सैगमेंट वाल। सैगमेंट है रोज़गार समाचार। तो रोज़गार समाचार में असी नवी नवी रोज़गार समाचार सुनते हाँ जिन्हों अजकल असामियां निकलिया हुई ने। तो शुरू करते हैं सब तो पहली रोज़गार समाचार तो। एक सरकारी नौकरी है DSSSB दिल्ली तो 1979 असामियां दी। एक एडवर्टिजमेंट है जिस दे विच TGT टीचर, IT असिस्टेंट, स्पेशल एजुकेटर, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट दियां पोस्टां निकलियां हुई ने, जिस दे फार्म जेड़े है 16 जून बेसिकली कल दोपहर 12 बजे आ चुके ने। ते इसकी आखिरी मिति जेड़ी है 15 जुलाई रात रात तक होएगी। ते इस दी वधेरे जानकारी लई तुसी DSSSBonline.nic.in ते जाके पता कर सकते हो।
1: तो इस दे नाल ही UPSC दी भी 400 प्लस पोस्टां दिख रही हैं। वक् वक् मंत्रालयां दे विभाग च टेक्निकल साइंस एडमिन मेडिकल पोस्टां निकलियां हन। अप्लाई दी आखिरी मिति 3 जुलाई शाम 6 बजे है। तो इस दी वैबसाइट है upsc.gov.in जिहदे उत्ते जाके तुसी अपनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लै सकते हो।
0: तो दोस्तों होर इसरो दियां भी JRF दियां 18 सीटां दी भर्ती निकली हुई है, जिस दे विच रिसर्च ते दिलचस्पी रखण वाले जिहड़े साडे दोस्त ने ओह जरूर अप्लाई करन। ते इस दे जिहड़ी वधेरे जानकारी है इसकी आखिरी मिति ते 11 जुलाई है। ते वधेरे जानकारी तुसी इसरो दी वैबसाइट isro.gov.in ते जाके हासिल कर सकते हो।
1: तो इस दे नाल ही RBI यंग प्रोफेशनल्स दी भी 12 पोस्टां आईयां हन। मुंबई दफ्तर लई भर्ती होने वास्ते महीने वास्ते 1.5 लाख का स्टाइपेंड मिलेगा। उम्र 21 तो 30 साल दी होनी चाहिदी है। आखिरी मिति इस दी है 6 जुलाई। तो इस दी वैबसाइट दे उत्ते जाके तुसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जिहड़ी लै सकते हो RBI.org.in ते।

0: दोस्तों कंटिन्यू करते हैं असी अज दे रोज़गार समाचार। ते अगले समाचार ने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज इन्हां दियां दो असामियां दी मंग है, जिस दी पोस्ट दा नाम है जूनियर इंजीनियर सिविल ते जूनियर इंजीनियर मकैनिकल। ते जिन्हां दे कोल डिप्लोमा इंजीनियरिंग दे विच है, भावें ओह सिविल या मकैनिकल होवे, ते उन्होंने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग कीती हुई है, वो इस दे विच अप्लाई कर सकदे ने। ते इस दे अप्लाई करन दी आखिरी मिति 5 जुलाई 2026 है।
1: ते इस दे नाल ही RCF कपूरथला दी वी पोस्ट निकलियां है, जेडी की 23 पोस्ट निकलियां है। स्पोर्ट्स कोटे दी पोस्ट दा नाम है, जिन्हां ने 10th कीती है या ITI क्वालिफाइड ने, ओ इस दे उत्ते अप्लाई कर सकदे ने। इहदी डेडलाइन है 14/7/2026।
0: तो इस दे नाल ही पंजाब एंड सिंध बैंक दियां 8 पोस्टां ने, जिस दे विच मैनेजर, सीनियर मैनेजर ते चीफ मैनेजर दियां पोस्टां ने। ते जिन्हां दी क्वालिफिकेशन दी रिक्वायरमेंट है बैचलर्स, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, BTech, MCA, MTech, जां बैचलर जिन्होंने CS या IT विच कीती होवे। ते इस दी आखिरी मिति 28 जून 2026 है।
1: ते उस दे नाल ही एम्स बठिंडा दी वी पोस्ट निकलियां है, जो कि सिर्फ एक है। प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3rd पोस्ट दा नाम है। इहदे वास्ते MSc, ME, MTech, BTech, BSc, MLT जिन्हां ने कीती है, वो अप्लाई कर सकदे ने। इहदी डेडलाइन है 15 जुलाई।
0: ते PSSSB दियां 310 वैकेंसीज निकलियां ने, वैकेंसीज इनक्रीज़ हुई ने इस दियां। ते वैटनरी इंस्पैक्टर दियां पोस्टां ने, ते जिन्हां ने 12वीं कीती हुई है ते डिप्लोमा इन वैटनरी साइंस है, वो अप्लाई कर सकते ने। ते इस दे नाल ही असी ए सैगमेंट वेल खत्म होने दा वेला हो गया। एक छोटी जी
1: बिल्कुल
0: म्यूजिकल ब्रेक लैने हाँ।
1: बिल्कुल।

जोश भी बड़ा जरूरी है। हर दिन एक नवी सोच, एक नवा विचार, अज दा सवाल सैगमेंट च जिंदगी दे जिहड़े उलझे सवालों ते सौखे जवाब मिलदे ने। जिंदगी तू सवेर भी है, तू शाम भी है, तू हंजू भी है, तू मुस्कान भी है, कदे रुस जावे कदे मना लेवे, पर यकीन रखी असीं तैनूं हर हाल च लव यू कहांगे दोस्तों। वेल दोस्तों,

0: एक जरूरी सोचना दोस्तों कि असी आकाशवाणी जलंधर दे एफएम रेनबो चैनल 102.7 मेगाहर्ट्ज़ तो बोल रहे हैं। हेडलाइनली लीड्स इंग्लैंड विखे आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप ना तहत भारत दे नैदरलैंड दिया महिला टीमों विचकार खेडे जान वाले टी20 क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री अपने दिल्ली केंद्र तो शाम 6:30 बजे तो सुनोगे, पर एफएम रेनबो ते प्रोग्राम तुसी एफएम रेनबो ऐप ते सुनते रहोगे। दोस्तों
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार सूबा सरकार

दोस्तों, तो इस सुनरे प्रोग्राम लव यू जिंदगी एफएम 102.1 सात मेगा हर्ट्ज़ आकाशवाणी जलंधर है, रेनबो चैनल है। ते मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश ते समा हो गया है 6:19 ते 35 सेकंड ते कुछ ही चिरा चुत सुनोगे प्रादेशिक खबरां।

दोस्तों तो सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी, तो मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। दोस्तों तुसी हुने गाना सुनिया परिंदा, मैं वो परिंदा जो फिर उड़ेगा। कहना मतलब दोस्तों इहदे विच आपां वैसे अजकल बात कर रहे हैं रिस्पैक्ट की, पर कहिंदे ना कि हाँ यार दोबारा उठ लेना चाहिदा है, कि पता साडी अगली मंजिल ही साडा अगला उठना होवे। असी दोस्तों गल कर रहे सी ना सत्कार ते, कहिंदे ना कि सत्कार दे बिना पिल्लर्स हुंदे ने, पिल्लर समझ रहे हो ना, थम, सत्कार दे थम यानी कि पिल्लर्स। सब तो पहला हुंदा सुनना यानी कि लिसनिंग। सत्कार दी जिहड़ी पहली पौड़ी है अगले नू पूरा सुनना, मोबाइल रख के अखा च अखा पा के। उदाहरण वजो बजुर्ग बापू जो 1947 की गल करे ना, पोता ना सोशल मीडिया बंद करके सुने, यह सुनना ही सत्कार है। सिख्या यह है कि बोलण नालों ना सुनण वाला वड्डा हुंदा है। दोस्तों उस तो बाद आती है सीमा यानी कि बाउंड्रीज। सत्कार मतलब अगले की ना नूं हां समझना, ओहदी

0: संताली दी गल करे ना, पोता ना सोशल मीडिया बंद करके सुने, यह सुनना ही सतिकार है। सिखिया यह है कि बोलन नालों ना सुनल वाला वड्डा हुंदा है दोस्तों। उस तो बाद आती है सीमा, यानी कि बाउंड्रीज। सतिकार मतलब अगले दी ना नू हां समझना, उहदी निजी स्पेस दा मान रखना। उदाहरण लई ती दे कमरे च जान तो पहला बूहा खड़खड़ाउणा, दोस्त दे फोन तो बिना पुछे ना फरोलना। सिख्या ही है कि जिथे सीमा मुकदी है उत्थे बेइज्जती शुरू होंदी है दोस्तों। उत्तों बाद आंदा है अंतर, एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंस। सत्कार मतलब यह मनना कि सामने वाला मेरा वर्गा नहीं, फिर भी ओना ही सही है। उदाहरण वजो लंगर च अमीर गरीब हिंदू मुसलमान इकट्ठे बैठ के खांदे ने, कोई पग बणदा हुंदा है, कोई टोपी पाउंदा, ते दोवे रब दे घर बराबर। सिख्या यही है दोस्तों कि रंग नस्ल धर्म वखरे हो सकते ने, पर दर्द ते खुशी दा रंग ना सब दा इक्को ही है। उस तो बाद आंदा है अज दे युग च सतिकार दा संकट। लोग कहंदे ने कि अजकल कोई किसे दा सतिकार नहीं करता। सच यह है कि असी लाइक शेयर सबसक्राइब दे पिछे ना धन्यवाद माफ करना जी आया नू भुल गए हां। उदाहरण वजो ना बस च ना बजुर्ग खड़ा, नौजवान कन्ना च जड़े हेडफोन लाके बैठा, पहला सीट आप मुहारे मिल जांदी सी, हुण मंगनी पैंदी है। उदाहरण वजो सोशल मीडिया ते ना 2 सेकंड च ना गाल कढ दिंदे आ, पर सामने वाले नू मिलके ना सत श्री अकाल कहण तो झिझकदे आ दोस्तों। फलसफा यही है कि तकनोलॉजी ने ना दूरी घटाई है, मनो ना मनो दोस्तों तहजीब नहीं बधाई। सतिकार डाउनलोड नहीं हुंदा, संस्कारा चो हुंदा है। आखिरी है सतिकार किवें कमाया ते वंडिए, एदे 4 नुक्ते आ दोस्तों। पहला है दिओ फिर मंगो। जिहड़ा बीज बोचोगे ना, जिहड़ा बीज बीजोगे ना उही फसल वड्डोगे। छोटे बच्चे नू भी जी कह के बुलाओ, वो भी थानू अंकल जी ही कहेगा या भैया जी भैन जी सब कुछ। उस तो बाद हुंदा है गलती मन्नो। सॉरी कहण नाल ना कद छोटा नहीं हुंदा, वड्डा हुंदा है। गुरु अर्जुन देव जी ने ना खुद तत्ती तवी ते ना बैठ के सबर दी मिसाल दित्ती सी। पिट पिछे तारीफ, यानी कि बूह ते चंगा बोलना सियाणप है, पिट पिछे चंगा बोलना ना सत्कार है। उत्वादा है समा दिओ। अज दे युग च ना सब तो वड्डा सत्कार है किसे नू अपना कीमती समा देना। मां बाप कोल 10 मिनट बैठ जाओ, वह भी फोन तो बिना।
1: Listen, life the lesson.

0: मेरा एक जिद्दी गुआंडी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगा लेने, पर ओ मननु तैयार ही नहीं सी कि सचमुच बिल जीरो आ सकता है। मैं क्या पुत्र, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सब का बिजली बिल जीरो आन लगा, फिर बोलिया होन लगा ही दिना हा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों तो इस सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी, तो मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। वेल दोस्तों बस कुछ ही वेला रह गया इस प्रोग्राम नू लव यू जिंदगी नू, ते अखीर विच ना एक प्यारियां जियां जिहड़ियां एग्जांपल्स दे नाल थानू डेफिनेशन दस के जाऊंगा सतिकार दी, ते लुक साडे जिहड़े महान बंदे रहे उन्हां दा की मन्ना सी ते असल च ओह सतिकार नू किवें दस गए सानू। दोस्तों उदाहरण वजो ना सब तो पहला भाई कन्हैया जी की दुश्मन का भी सतिकार करती सी, किवें जंगे मैदान च जो सिख जख्मी हो रहे सी भाई कन्हैया जी सब तो सबनों पानी पिला रहे सी, सिखा नू भी ते मुगल फौजियां नू भी। सिखा ने शिकायत की तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने पूछया, भाई साहब बोले मैनू तो हर चेहरे च तुसी ही नजर आउंदे हो। गुरु साहिब ने खुश होके मरहम दी टब्बी भी दे दित्ती। दोस्तों सिख्या ही है कि सतिकार वर्ती धर्म जा नस्ल नहीं देखता, जख्मी दी पहली पछाण सिर्फ इंसान हुंदी है। दूजी उदाहरण है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अहुदे तो वड्डा इंसान, यानी कि एक बार राष्ट्रपति कलाम साहिब किसे फंक्शन च गए सी, सुरक्षा वाले ने एक बुजुर्ग सफाई कर्मचारी नूं ना पिछे हटा दिता। कलाम साहिब ने खुद जाके वह बुजुर्ग का हाथ फड़िया, स्टेज के नाल बिठाया ते कहा, इन्हां दे हत्था करके ही मेरी कुर्सी साफ है दोस्तों। आए हाय हाय, सिख्या ही है कि दोस्तों कुर्सी का सतिकार उदो ही बचता है जो कुर्सी ते बैठा बंदा झाड़ू वाले का सतिकार करे। बहुत ही वड्डी गल है दोस्तों। उस तो बाद गल आती है पंजाबी मां यानी कि अणकया सतिकार। अमृतसर च एक घर च ना नूह नवी आई सी, सस ने पहले ही दिन कहा, पुत रोटी मैं पकाऊं तू बस मेरे कोल बैठ जाया कर, मैनू इकलापन ना लगे। 10 साल बाद जदों सस मंजे ते पई ना ओही नूह सारी रात उहदे सरहाने बैठी रही। लोग पुछया कि क्यों, कहिंदे जिसने मैनू धी वांग बिठाया मैं उन्हों मां वांग ही सुलावांगी। सिख्या है सतिकार मंगिया नहीं जांदा,

दोस्तों ऐसी आज द लव यू जिंदगी ते मैं थोड़ा अपना आर जे दोस्त रवनीश। आई होप तुसी बहुत इंजॉय किया होगा, तुम्हें मजा आया होगा नवीं कहानियां सुन के। मैनू तो बहुत मजा आया दोस्तों। अखीर विच यही कहूंगा कि दोस्तों जिंदगी पूरी नहीं होंगी पर सोहनी जरूर बनाई जा सकती है। आओ इसनू मिलके कहिए लव यू जिंदगी। स्टे ट्यून गाइस, जल्द ही मिलेंगे। बाय बाय।

हाँ जी नमस्कार आदाब सत श्री अकाल तुसी ट्यून कर चुके हो जी FM रेनबो जलंधर ऐप नूं ते मैं थोड़े मित्र आरजे प्रविंदर अज थोड़े नाल बहुत सारिया गल्लां करन नूं एक बार फिर तो हाजिर हाँ जी क्योंकि कहिंदे ने कि आपने बुलाया और हम चले आए तो इदा हो नहीं सकता कि आप आईए ना बिकॉज थोड़े नाल गल करके ना मन बहुत हल्का हो जाता एंड कहिंदे ने कि जिथे मन की गल हो जाती है तो फिर उस तो बाद सब कुछ ओके हो जाता है जनाब कहिंदे ने मन जीते जग जीत बिल्कुल जी एंड उस तो बाद मन जो हल्का हो जाता ना फिर उस तो बाद कोई चीज़ बाकी रह नहीं जाती तो बिल्कुल मन में बहुत ओके रखना चाहिए ये तो सी काम की गल उस तो बाद हूँ प्रोग्राम जोड़ा शुरू हो चुका है जी FM रेनबो से वो है जी फिल्मी दुनिया जी हाँ फिल्मी दुनिया प्रोग्राम के अज असी थोड़े नाल गल्लां बातें करांगे उस शख्स के बारे जिन्होंने सानू बैक टू बैक हिट गीत दिते मतलब वो कलाकार गाने वाले नहीं ना ही उन्होंने म्यूजिक डायरैक्ट किया बस उन्होंने की किया उन्होंने उन्होंने गाणियां नू अपनी कलम के नाल नवाजिया है जी हाँ पहली पौड़ी होंदी ना लिखना तो उन्होंने उन्होंने गाणियां नू लिखिया है मतलब कौन ने वो शख्स कौन वो कलाकार ने जिन्होंने उन्होंने गाणियां नू लिखिया है वो सारा कुछ दस तुहानू दसांगे तो अज किना किना बारे असीं गल्लां बातें करनियां ने वो भी तुहानू दसांगे बने रहो साडे नाल FM रेनबो जलंधर ऐप दे उत्ते मैं तुहाडा मित्र आरजे प्रविंदर एंड इस गाने तो बाद तुहानू दसांगे कि किना बारे गल्लां करनियां ने ते अज उन्हां शख्स नू असी किना कमाली याद करना है उन्हां दे गाने तुहानू दसांगे बैक टू बैक वड्डे कलाकारां बारे बने रहो मेरे नाल FM रेनबो जलंधर ऐप ते

जी चलती है क्या 9 से 12 है जुड़ा फिल्म था कैंट जा गीत, जो पहला सलमान खान साहब होना दे ओदे फिल्म आएगा। दैन उस तो बाद वरुण धवन, जदों ये फिल्म रीक्रिएट हुंदी है तो गाना रीक्रिएट हुंदा है, तो दैन उस तो विच ये गाना रीक्रिएट हुंदा तो गाना उस तरीके का बाकी प्रॉपर एनर्जी दे नाल फिर तो एक बार कैंट तरीके दे नाल सामने आता है। सो मतलब देव कोहली साहब मेरे ख्याल नाल लैजेंड जेकर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सो आओ अगे इन्हां दी जर्नी दे बारे गलबात करते हैं। कहिंदे साल 1964 दे विच 22 साल दी उम्र दे विच कोहली साहब अपनी किस्मत अजमाउण दे लई फिल्मी नगरी मुंबई विच आ गए। उस वेले बंबई कहा जांदा सी। बंबई दे विच शुरुआती दिन बहुत मुश्किल भरे इन्हां दे रहे। उस तो बाद फिल्मी स्टूडियोज़ दे इन्हां ने चक्कर कट्टे, संगीतकार अते निर्देशकां नूं मिलिया अते अपनियां नज़मां उन्हां नूं सुणाउंदे रहे। पहले ब्रेक की जेकर गल की जाए तो फिल्म गुंडा तो 1969 दे विच उन्हां नूं फिल्म मौका पहला मौका संगीतकार जो इन्हां दे दोस्त जी एस कोहली ने दिता फिल्म सी गुंडा। 1969 दे विच उन्होंने एक गीत खुशी से जान ले लो जी का दूजा अंतरा लिखिया। एक करियर उन्होंने शुरुआत सी। इस विच गीतकार वजो इन्हों क्रैडिट भी प्राप्त होया। उस तो बाद वड्डी सफलता की जेकर गल करिए 1971 दे विच इन्हां दे हाथ एक बहुत वड्डी सफलता लगती है जिसनों किशोर कुमार ने गीत नूं गाया। करियर का पहला सुपरहिट गीत लाल पत्थर फिल्म दे विच प्राप्त हुंदा है। अदाकार राजकुमार अते हेमा मालिनी जी ने फिल्माया यह गीत अते उस तो बाद आवाज़ जिहड़ी है किशोर कुमार जी की प्राप्त हुंदी है। गीत गाता हूँ मैं गुनगुनाता हूँ मैं जबरदस्त हिट गीत रहा। इस गीत ने देव कोहली जी ने इंडस्ट्री दे विच एक वक्री पहचान दिवाई, पर अफसोस इस वड्डी सफलता के बावजूद लंबे समय तक इन्हों काम नहीं मिले। फिर अगे किस तरीके दे नाल इन्हों सफलता प्राप्त होंगी है, किस तरीके दे नाल अगे ग्रो करते हैं, होर की कुछ इन्होंने देखिया, होर की कुछ इन्होंने गीतों के लिखा, वह भी तुम्हें सुनावे। बने रहो साढ़े नाल FM बैंड जलंधर ऐप के उत्ते मेरे नाल, मैं थोड़ा मित्र RJ परविंदर।

वाह जी वाह, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए ही सदा मुस्कुराता हूँ मैं। एक मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट देते, एक बहुत ही खूब गीत लिखा देव कोहली साहब ने। पर इस हिट गीत तो बाद भी 18 साल तक इंतजार करना पड़ा देव कोहली जी ने। इन्हें लाल पत्थर तो बाद अगले लगभग 18 साल तक देव कोहली लिए गुमनामी और संघर्ष के साल सन। 1970 ते 80 दे दहाके दे विच उन्होंने कुछ फिल्मां जिवें कि एक बार कहो विच गीत लिखे, पर वह मुख धारा की सफलता तो दूर रहे। हालांकि ये मुश्किल उन्होंने परिवार ने उन्होंने आर्थिक मदद की, जिस करके वह मुंबई दे विच ही टिके रहे। देव कोहली खुद मानते रहे कि 18 साल के संघर्ष ने उन्होंने जिंदगी सबर अते संतोख बहुत सिखाया। उस तो बाद 18 साल बाद किस्मत इन्हों की पलटी खाती है, इन्हों गीत प्राप्त होंदा है मैंने प्यार किया, और कहते कि वो सलमान खान साहब की पहली मूवी सी एज एन लीड एक्टर। उस तो पहला एक मूवी उन्होंने होर की थी जिस विच उन्हों का गैसट अपीरियंस सीगा। तो 1999 देव कोहली जी के जीवन दे विच करियर का सब तो वड्डा टर्निंग पॉइंट साबित होया सूरज बड़जात्या जी ने अपनी फिल्म मैंने प्यार किया जो बना रहे सी अते संगीतकार सन राम लक्ष्मण जी। सूरज बड़जात्या नूं देव कोहली का नाम सुझिया। देव कोहली ने अपने इस फिल्म दे लई कई गीत लिखे जो ब्लॉक बस्टर साबित होए। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, कबूतर जा जा जा, आ जा शाम होने आई, आते जाते हंसते गाते, कहो तो से सजना, मतलब बैक टू बैक सारे गाने उस फिल्म दे हिट, फिल्म हिट, गाने हिट, अते देव कोहली साहब सुपर हिट। मतलब इदा दे गीत तो बाद इन्होंने शायद पिछे मुड़ के नहीं देखा। सो बिल्कुल इन्हों बारे होर गल बात करते हैं। इस तरीके दे नाल बने रहो मेरे नाल FM रेनबो जलंधर ऐप के उत्ते। मैं थोड़ा मित्र अर्ज परविंदर एक होर कैंट जहा गाना प्ले कर देना, दैन फिर उस तो बाद गल्लां बातों जारी रखते हैं जनाब।

0: दूध घोल लिया
1: कोई ना,
0: एक की मैं कुफर तोल लिया
1: कोई ना,
0: एक की मैं जहर घोल लिया
1: कोई ना भाई कोई ना भाई कोई ना।
2: वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गीत फिल्म जागते रहो तो सुनिया मोहम्मद रफी ते बलबीर होना की आवाज़ के। अगली अदाकारा बारे जिस बारे असी गलबात करनी है, पंजाबी बहुत ही खूबसूरत अदाकारा जिन्होंने अज भी अपना लोहा मनवाया होया, तो उभरती बहुत खूबसूरत प्रभावशाली प्रसिद्ध अदाकारा तानिया के बारे मुंडली जीवन की जेकर गल की जाए तो तानिया का जन्म 16 मई 1993 जमशेदपुर झारखंड के एक सिख परिवार के होंगे। उन्हों का पालन पोषण अमृतसर दे विच होया। पढ़ाई उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई अमृतसर के गुरु नानक देव स्कूल तो की, दैन फिर उस तो बाद गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी दे विच दे संबंध के कॉलेज दे विच आ जांदे ने। उस तो बाद पढ़ाई दे विच बहुत होशियार सन, फिर उन्होंने मैडिकल साइंस की पढ़ाई की, उस तो बाद पोस्ट ग्रैजुएशन MBA करते हैं। थिएटर ते डांस उन्हों का शुरू तो ही लगाव रहा, तो थिएटर भी उन्होंने किया कॉलेज के दौरान। उन्होंने झुका अदाकारी वाल हो गया, लगभग 4 साल थिएटर के उन्होंने काम किया। ट्रेंड क्लासिकल डांसर भी हैं, उन्होंने कौमी पद्धर के उत्ते नैशनल लैवल के कई मुकाबले भी जीते ने। तानिया के माता पिता की जेकर गल की चाहते सन कि पढ़ाई करके वह पूरी करके सुरक्षित नौकरी करन, पर तानिया अदाकार बनना चाहते सन। उन्होंने अपने परिवार को मनाया, फिर मुंबई चले गए, फिर उन्होंने झोली फिल्म पैंती है 2018 किस्मत, जो प्रमुख अदाकारा दे तौर ते इन्हां नूं प्राप्त हुंदी है फिल्म 2020 दे विच सुफना। उस तो बाद तानिया जी पिछे मुड़ के नहीं देखदे, उन्होंने सन ऑफ मनजीत सिंह 2018 दे विच गुरप्रीत कुकी होणा दे नाल भी बहुत वधिया काम किया। 2019 दे विच फिल्म इन्हां दी झोली पैंदी है गुड्डियां पटोले, जिस दे विच सोनम बाजवा ते गुरनाम भुल्लर इन्हां दे नाल हुंदे ने। 2021 दे विच किस्मत 2 इस फिल्म दे विच उन्होंने एक अहम किरदार निभाया। 2022 दे विच फिल्म प्राप्त हुंदी है गुरनाम भुल्लर होणा दे नाल लेख बाजरे का सिट्टा 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਾਦੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣੀ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਸਟ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ RJ ਪਰਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ FM ਰੇਨਬੋ ਐਪ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ।

नमस्कार, राधे बज गए 8 ते पिछले एक बार फिर तो एफएम न्यूज़ हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय माली संस्थाओं वालों विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए विद्या विकसित की जानी चाहिए। श्री मोदी ने आज फ्रांस इवियान में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स नाल दुवली मीटिंग की है। इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलैक्ट्रॉनिक्स निर्माण केंद्र वजों उभरिया है। उत्तर प्रदेश के गुजरात में दो सड़क हादसों के 12 लोगों की मौत हुई है, 30 के करीब जख्मी हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून ने एक विशेष प्रोग्राम दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार अधीन करीब 2400 करोड़ रुपए के लाभ वंडणगे। पंजाब में यह प्रोग्राम पटियाला, संगरूर, लुधियाना, जलंधर, अमृतसर और बटाला में ईपीएफओ दफ्तर समेत 6 थावां पर करवाया जाएगा। राष्ट्रीय महिला कमीशन के चेयरपर्सन विजया राहतकार ने खुलासा किया है कि पिछले कई सालों में पंजाब में एनआरआई पतियों वालों लगभग 32,000 औरतों को छोड़ दिया गया है। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने चंडीगढ़ में पंजाब एमएलए होस्टल तो विरासती फर्नीचर की अमरीका च कथित नीलामी बारे चंडीगढ़ प्रशासन तो वेरवे सहित रिपोर्ट मंगी है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के मद्देनज़र पठानकोट पुलिस पूरी तरह चौकस है। जम्मू कश्मीर नाल लगदी पंजाब सरहद ते 50 तो वध चौकियां कायम ने। पंजाब दे खजाना अते आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार नूं जहरीली शराब बनाउण लई इस्तेमाल होण वाले मिथाइल अलकोहल ते पाबंदी लगाउण वास्ते फौरन कदम चुकण दी अपील कीती है। औरतां दे आईसीसी 2020 विश्व कप विच लीड्स हिंडगले विखे खेडे जा रहे मैच विच नीदरलैंड ने भारत खिलाफ टॉस जीत के पहला गेंदबाजी करने का फैसला किया है।

नमस्कार, राधे बज गए 9:09 ते पेश ने एक बार फिर तो एफएम न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय माली संस्थावां वालों विकासशील देशों नूं आर्थिक मजबूती प्रदान करने लई विधियां विकसित कीतियां जानियां चाहीदियां ने। श्री मोदी ने अज फ्रांस के इवियान विच जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स नाल दुवली मीटिंग की है। इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलैक्ट्रॉनिक्स निर्माण वजों उभरिया है। उत्तर प्रदेश ते गुजरात विच दो सड़क हादसों विच 12 लोगों की मौत हुई है, 30 दे करीब जख्मी हुए ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून एक विशेष प्रोग्राम दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत रुजगार योजना अधीन करीब 2400 करोड़ रुपए का लाभ वंडणगे। पंजाब विच यह प्रोग्राम पटियाला, संगरूर, लुधियाना, जलंधर, अमृतसर ते बटाला ईपीएफओ दफ्तर समेत 6 थावां ते करवाया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया से घूम रहे उस संदेश को रद्द कर दिया जिस विच दावा किया गया कि रक्षा सकत्र राजेश कुमार सिंह वालों जारी एक पत्र विच ऑपरेशन सिंदूर 2.0 दीयां तैयारियां दी तजवीज़ है। राष्ट्रीय महिला कमिशन के चेयरपर्सन विजया राहतकार ने खुलासा किया है कि पिछले कई सालों के पंजाब विच एनआरआई पतियों वालों लगभग 32,000 औरतों को छोड़ दिया गया है। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने चंडीगढ़ च पंजाब एमएलए होस्टल तो विरासती फर्नीचर की अमरीका च कथित नीलामी बारे चंडीगढ़ प्रशासन तो वेरवे सहित रिपोर्ट मंगी है। अमरनाथ जी यात्रा के मद्देनज़र पठानकोट पुलिस पूरी तरह चौकस है। जम्मू कश्मीर नाल लगदी पंजाब सरहद ते पंजाब तो वद चौकियां कायम ने। पंजाब के खजाना मंत्री ते आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार नूं जहरीली शराब बनाउण दे लई इस्तेमाल होण वाले मिथाइल अलकोहल ते पाबंदी लाउण वास्ते फौरन कदम चुकण दी अपील कीती है। एसान हुण तक दी एफएम न्यूज़ हेडलाइंस। हुण तुसीं सुणोगे अगला सिलसिलेवार प्रोग्राम एफएम रेनबो ऐप जलंधर से।

एंड अगली फरमाइश साढ़े कोल पहुंच चुकी है। कहते पदमपुर जिला गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा जी, ममता अरोड़ा जी, कीर्ति अरोड़ा जी, भूमिका अरोड़ा जी, मूवी वो कौन थी, नैना बरसे रिम झिम स्वाई, इनकी फरमाइश को प्ले कर देते हैं जी। एफएम रेनबो ऐप जालंधर पे।

अगली फरमाइश जेड़ी साढ़े कोल पहुंची है, कह रहे हैं नमस्कार जी, हार्दिक अभिनंदन रेनबो जलंधर के हम कायल हो चुके हैं जो इतना स्नेह बांट रहा है। गीत पलट मेरी जान, स्वर आशा भोसले जी, फिल्म आन मिलो सजना चंडीगढ़ सतीश अनेजा जी, विमला अनेजा जी, सो आइए इनकी फरमाइश भी हम ये वाला गीत प्ले कर दें जनाब।

जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा जी, पूनम गगनेजा जी, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा जी। सो आइए इनकी फरमाइश को प्ले कर देते हैं जी, एफएम रेनबो ऐप जालंधर पे।

और अगली फरमाइश जड़ी साढ़े कोल पहुंची है ने गाने के बोल मैं तेरे प्यार में पागल, आवाज किशोर कुमार जी की, प्रेम बंधन गीत है इसी फिल्म का। और मिर्जापुर क्षेत्र यशपाल धीमान, श्रीमती कृष्णा धीमान, राहुल धीमान, शुभम धीमान, प्रियंका धीमान, कोमल आंचल कुंज, पर्व प्रवीण धीमान, चिराग धीमान, रजत धीमान, राजेश धीमान, परविंदर सर जी, सुप्रेम नमस्कार, प्यार भरी नमस्कार। आपने इन्वर्टर एसी के बारे में बताया जो बहुत ही उपयोगी चीज़ बताई हमें सभी के लिए, बचत एवं खर्चे के बारे में बताया, बहुत ही अच्छा लगा। इस प्रकार हमारे को भरपूर ज्ञान प्राप्त होगा, आप हमारा मनोरंजन करते रहें, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सो आइए इनकी फरमाइश प्ले कर देते हैं जी, FM रेनबो ऐप जालंधर पे।

नमस्कार। रात की 10 बज चुके हैं और आपने ट्यून किया हुआ है एफएम रेनबो ऐप जालंधर को। शाम गजल कार्यक्रम का आगाज हो चुका है और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आरजे परविंदर। कहते हैं कि दर्द कब ठहरेगा, दर्द दिल कब रात

कहते हैं कि कभी रोना, कभी हंसना, कभी हैरान हो जाना, मोहब्बत क्या भले चंगे को दीवाना बनाती है। FM रेनबो ऐप जालंधर, शाम ए गजल।

कहते हैं कि वफा की कौन सी मंजिल पे उसको छोड़ा था, वफा की कौन सी मंजिल पे उसको छोड़ा था कि वो तो याद हमें भूल कर भी

ना पूछो हुस्न की तारीफ हमसे, ना पूछो हुस्न की तारीफ हमसे, जिससे हो बस वो हसीन है। FM रेनबो ऐप जालंधर, आपने ट्यून किया हुआ है कार्यक्रम शाम ए गजल।

नमस्कार। रात के बिल्कुल 10:30 बज चुके हैं और आपने ट्यून किया हुआ है FM रेनबो ऐप जालंधर को, और मैं हूं आपके साथ आपका आरजे, आपका दोस्त आरजे परविंदर। कहते हैं कि जिहाल मिस्की मुकुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतिया, किताब हिजा नदारा में जाके लेहू का हाय काहे लगाए छतिया। प्यार का नगमा है कार्यक्रम, एक प्यार का नगमा है

कहते हैं कि नए दौर के नए ख्वाब हैं, नए मौसमों के गुलाब हैं, ये मोहब्बतों के चिराग हैं, इन्हें नफरतों की हवा ना दे। आपने ट्यून किया हुआ है FM रेनबो ऐप जालंधर, एक प्यार का नगमा है।

कहते हैं कि पलकों की हद को तोड़ के पलकों की हद को तोड़ के दामन पे आ गिरा कि एक अश्क मेरे सब्र की तौहीन कर गया। FM बैंड 102.7 FM रेनबो, एक प्यार का

कहते हैं कि उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। कहते हैं कि अजब अंदाज में यह घर गिरा है, मेरा मलबा मेरे ऊपर गिरा है। 102.7 FM रेनबो।

यूं ही बसर तन्हा, काफिला साथ और सफर तन्हा। और कहते कि हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे। FM बैंड 102.7 FM रेनबो कार्यक्रम एक प्यार

कहते हैं कि ये कैसा नशा है, मैं किस खुमार में हूं, तो आके जा भी चुका है, मैं इंतजार में हूं।

नमस्कार एफएमएन 102.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल तुसीं ट्यून कीता होया। मैं तुहाडा मित्र आरजे परविंदर। प्रोग्राम चल रहा सी एक प्यार का नगमा है। अज दी सभा दे साडे सारे प्रोग्राम समाप्त होंदे ने। कल सवेरे 5:55 ते होवेगी तुहाडे नाल मुलाकात। साडे आरजेज होणगे तुहाडी सेवा दे विच हाजर। तद तक लई सानू दे इजाजत। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद।